ကလေးပုန်ကိလမ်တမစီယာ

वांखेम इनाखुन मिलई मन सकपा मैते सई थौनी रोल ताबिरी आकाशवाणी इम्फाल हौजिक तोंगान तोंगान बखोंजेल मतम शेखर कुदोल तमजरी कुदोल के आहन मरे लौबिरसी अरामबम जमुना देवी न सकपा इलांगबम नवीन चंद्र न सेरिंगबा लाखले नोंजुथा असुन न सेहोबो मतम शेई

ताजरुब वासक न लाचरुब मूर्तिबु पुंसी मिशा लांगनवनी हायरोरा ताविरी युमलेंबम अरुण कुमारी देवी ने सकपा काईटी टामीना सेरिंगबा मतमिशई करम लेलिवगे नहाकपु नपाउ ताखिदबु कुईरी नुंसी सिंगलो उखिदरी मथंग मुखुरोल तमजरी सगोल सेम सना जाऊगी सहेकता नवचंद्र सोंगथामना सेरिंगबा मतमिशई

0: ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯔꯥꯃꯦꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡꯍꯅ ꯈꯣꯡꯕ ꯕꯥꯏꯂꯤꯟ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯉꯁꯤ ꯀꯪꯂꯥꯆꯦꯜꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 6:15ꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯣꯟꯊꯥꯡ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 6:30 ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯒꯣꯇꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯁꯟꯗ꯭ꯌꯥ ꯔꯥꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩ꯫ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯅꯁꯥꯃꯨꯛꯇ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯗ ꯁꯦꯜ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ, ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯤꯒꯗꯕꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯁꯨꯖꯥꯇꯥ, ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 8:45 ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯏꯆꯦꯜꯂꯛꯇ꯫ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 9:00 ꯇꯥꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯁꯃꯥꯖ ꯄ꯭ꯔꯚꯥꯠ, ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯂꯣꯡꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯏꯪꯒ꯭ꯔꯥꯖꯤꯗ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ꯫
1: ꯅꯃꯁ꯭ꯀꯥꯔ, ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯁꯦ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯄ꯭ꯔꯚꯥꯠ ꯀꯦ ꯁꯥꯊ ꯃꯦ ꯐꯔꯍꯠ ꯅꯥꯁ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री

0: 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं डूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब डूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा

जगोई आना है जगोई शाबी लई शाबी ममई मको खंगे जगोई शाबी लई शाबी ममई मको खंगे मागी जगोयू।

0: ऐशु घर आओगे।
1: मणिपुरी मतमिसई खुदोल की अनिसुब लौबी नौमाइथेम पहाड़ी की सहेक्त संध्या रानी अथोकुम सेरेंग मतमिसई असुम सहौरी करीबु नंगना।

会呢，准备吧。阿多啊，侬是还不都等的海螺吧？是，大爷，海螺吧？是，海螺。

หยดทิ้งทางดูน่าทำลีบาปูนกิเช็คลากระปางกระโวยเร

आकाशवाणी इम्फाल हौजिक नुमितयुंबा पुंग तारानितोय तारे कांगला चैनल गानी सुबा थौरम परें संदोपा हौजरी संदोक्सेरिबा मीडियम वेब मीटर सहुमनि पुदास्मिक अमा किलोहर्ट्ज 2.92 हौजिक मणिपुरीदा नुमितयुंबा की पाव ताबिरसी

0: सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
1: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
1: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
1: इसे तराशा जाता है और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
1: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
1: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
2: जी।
1: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
2: श्रोताओ, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओ, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
2: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
2: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
1: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
2: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
1: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
2: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
1: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
3: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
4: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
3: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
5: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
3: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
5: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
6: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
5: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
3: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
4: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
7: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है।
8: तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है।
7: ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
5: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
8: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
5: क्यों दे दूं?
7: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
5: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
7: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
4: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
9: महाराज की जय हो,
10: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
4: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
11: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
7: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
11: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
5: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
11: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
5: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
7: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
5: जी, पहले मारा था तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
11: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
12: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
11: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे?

0: गया है।
1: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
2: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
3: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
4: गाड़ी में बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
3: इसके पास जा रहा है।
4: सिद्धार्थ ने बताया होगा कैसे? देवदत्त तो कह रहे
1: हैं। कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
5: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
2: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
1: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
6: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
2: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
0: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
7: महाराज की जय हो।
8: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
9: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
10: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं चल चल।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी, हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर यान आदित्य L1 के बारे में।
9: आदित्य L1 के बारे में?
2: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
6: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
8: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
7: जी सर, उनका नाम है भास्कर आचार्य।
8: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
7: जी, मेरा नाम श्रुति है।
8: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कर आचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
10: सूर्य ग्रह है या तारा?
8: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सब

0: सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
1: सर मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
0: सुमित तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
2: अच्छा सर।
3: सर मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है, क्या वहाँ आग जलती है?
4: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
0: बच्चों दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती, सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
3: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
0: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
3: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
0: शाबाश, समझ गए ना?
2: जी सर।
4: सर जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
3: सर आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
0: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
2: जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
4: सर हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ सही कहा, आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
3: सर मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
2: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
3: सर मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है, क्या वो जल नहीं जाएगा?
0: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
4: जी सर। सर आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
3: सर एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें, ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
4: सर आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश, खूब पढ़ो खूब पढ़ो और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
5: तो साथियों अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
6: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग
8: एनसीईआरटी की तेंबांगलुइन ने संदोक से बतौरम उमंग ताबिरे आकाशवाणी इम्फाल हौजिक लांथोकचेरी सिन्नजरी अदोम द माइक थौरम लांथोकलीबा ngangbam रणबीर परम पातकी थौरम पुथोकपी सगोल सेमरोमा पुथोक पुथोक तेंबांगबा रतन सलाम हौजिक लौबीरसी सिन्नजरी अदोम द माइक।

விஷயக்கல்வி விரிவான அமைச்சர்.

0: ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯗꯕꯅꯤ ꯂꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯃꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ sorry sorry kau khre adu tum si sei siam nungai ngon da
1: yani adu mati yam sakira bani na kaju kai di matung tar ko da mu matang sa da mu une sie na hai jeri forum pa da aina oja ma thengne jai oja se akoi gi akashwani imphal gi program radio gi program si thawa yau na ta bi ba adu mu oja ma ni oja ming le pham ta hai bi ba ming
2: long jam mi bo chaw wa
1: oja si ji kai kai ta bi gi sin pham dum ta ta bi wa
2: sin pham jai dukan pham jari
1: kan si kai yo bi ba
2: gala man hai ta re
1: hoi gala man lo ke hoi chang
2: mai wa chang mai nga sa lon
1: ba sa nga ya ba yon ba ya nu ngai ji oja sma na ma yam gi se ba ta bi ni ma si dukan le bi si su le tra gi ya koi ma yam je wa do ri ni ta san thang na si lo ba ma ta le re dei ni le do ta bi he ma hai re do kai kai program na hena ta bi ba ge pam je ba program ga jo kra hai bi
2: isai na anam bo ina ta je ya du ga chumang le la jo dum ara phu puri mo ka dum ta je
1: ya no hai je re jo ta ba ya no ta bi ye bi je ta ba da ma si ma di ya koi na yam harak ja ba pa khom ni hai je ge dukan to bi re ko si sahi kya mo ka su bi re
2: ai sahi kun tha bo su ja re
1: isha gi sahi si ho je kya mo le ra ma de
2: sahi je hum bu ga manga
1: नुमाइ जरे कसी उने तना वजा न रेडियो द थवा याउ न ताबीबा वजा मु न जेबसी मथौ न नुमाइ जरे द मथंग द मु खुदों साबा मदम उ थैने न सिगो जाबो परम पाता न आइगा न थैने जबे इना ओमनी इना उसी अकय आकाशवाणी इंफाल के प्रोग्राम बु थवा याउ न ताबीबा दुगो मै नाउनी इना उसी गमता न वाली छाजेगे
3: आ आइगे मिंग कशाम ने लमनी आइसे सोरम ने काइ खंगला बु सवाई देकिने दो
1: अति दिनो जे कोगी आकाशवाणी फांगे रेडियो की प्रोग्राम फजन दम ताबी बिरो
3: आ दम ताजे आइ दम तायुक तगी हावर नुंदांग प्रोग्राम लुइ जे बक ताजे इन हाइवे
1: के हम नंगाइ जे कोई कोई दिया आकाशवाणी फांगे प्रोग्राम ताबी हाइवे सिमति कोई थमोय हेक यांग ने हराउ जे आइदुनी आ दिनो छि लागले सु तम बदिया लुइ बिरा बकाइ की लुइ बिरा की
3: हाइवे माइग्रेशन बक दिलो सेंजरे मखाता न दि तम थद्रे अदुगा हम छि लेदा आइ कंप्यूटर की दुकान मा याउ जबने समायने नुम लेजरे
1: रेडियो के प्रोग्राम से कानो कानो प्रोग्राम ना प्रोग्राम तना हेना थवा याउ न ताबी के दम दम
3: forum je simane nungai simane hele habdi ai di lejete loinamak nungai adubu hangbira abani na matang haijau hairaga di good morning manipur sigi forum je yam nungai adum live phone in program orega su sms ki bu orega su meyam na wari watai sana dana adagi sei khanbirak pa pa pa khanbirak pa tha ba chingumba meyam se adum nungai na thamjage do ai hena
1: live phone in program ki kari gi thawya wi bani na ko gi sei je choidana pambiram gani haina haibasi ko khangje re ya adi sei matiam tang talent ama utpoina sei matiam tang ᱛᱚᱠᱤ ᱨᱮᱫᱤ ᱟᱢ ᱱᱚᱝᱟᱭ ᱡᱮᱜᱟᱱᱤ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱠᱞᱟᱣᱱᱟ ᱯᱷᱚᱨᱚᱠ ᱯᱟᱦᱟᱭ ᱛᱟᱨᱮ ᱥᱮᱭ ᱢᱟᱠᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱮ ᱟᱢᱛᱟᱝ ᱢᱮᱭᱟᱢ ᱫᱟ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚᱭ ᱠᱷᱤᱞᱟᱱ ᱠᱤᱵᱟ ᱭᱟᱨᱚᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱮ ᱥᱚ

0: ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯏꯍꯧꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯒꯣꯄꯥꯜ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯒꯣꯈꯂꯦ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯨꯡ 2:15 ꯆꯠꯂꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯗꯣꯄꯍꯔ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए श्री मोदी ने कहा भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया अब समाचार विस्तार से भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा फार्मास्यूटिकल्स रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी
2: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी
1: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
3: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
4: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालटाल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
5: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
6: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
7: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 की बार पहली जीत दर्ज की। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और AI सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में प्रस्तुत है फौज भाइयों के लिए ये पहला नगमा फिल्म अनाड़ी से। गीत के गायक साधना सरगम और उदित नारायण, गीत के लेखक समीर और संगीत निर्देशक हैं आनंद श्रीवास्तव और मिलन श्रीवास्तव। और इस गीत में नजर आए थे वेंकटेश के साथ करिश्मा कपूर।

कार्यक्रम में ये अगला गीत है फौज भाइयों के लिए। फिल्म का नाम है सपने और इस फिल्म से जो गीत हैं उनके गायक हैं हेमा सरदेसाई और मलयासिया वासुदेवन। गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार एआर रहमान। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजीव मेनन और कहानी राजीव मेनन द्वारा, और इस फिल्म में जो अभिनय किया है अरविंद स्वामी के साथ प्रभुदेवा और काजोल।

मिन मिनी की आवाज़ में रोज़ा फिल्म से ये गीत है फौज भाइयों के लिए, पीके मिश्रा द्वारा लिखित गीत और एआर रहमान के संगीत में। इस फिल्म के निर्देशक हैं मनी रत्नम और छायांकन किया संतोष शिवान ने, संपादन सुरेश उर्श द्वारा, संगीत एआर रहमान द्वारा और उत्पादन कंपनी है कवि थलया प्रोडक्शंस।

ये प्रसारण है आकाशवाणी इम्फाल के कंगला चैनल द्वारा और आप सुन रहे फौजी भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में फिल्म संगीत। कार्यक्रम में ये अगला गीत है 1995 की बॉम्बे फिल्म से, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के साथ जीवी प्रकाश और श्रद्धा की आवाज़ों में। महबूब की लेखन और संगीत प्रदान किया एआर रहमान ने। ये फिल्म मणि रत्नम द्वारा निर्देशित फिल्म है और इसका उत्पादन और संपादित सुरेश उर्ष द्वारा

और कार्यक्रम में ये अगला गीत है परिणीता फिल्म से, सोनू निगम और श्रेया घोषाल द्वारा ये गीत, स्वानंद किरकिरे के बोल और शांतनु मोइत्रा द्वारा तर्ज। ये फिल्म एक बंगाली लघु उपन्यास पर आधारित थी और ये फिल्म आई थी 2005 में एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय प्रेम फिल्म के आधार पर। नवोदित निर्देशक प्रदीप सरकार द्वारा निर्देशित ये फिल्म है, जिसके निर्माता हैं विनोद चोपड़ा और फिल्म में नज़र आए थे संजय दत्त, सैफ अली खान और विद्या बालन।

0: आकाशवाणी इम्फाल अरुण गजी ने पाऊंग ना सर टेनिसन शिमाई ने पामी दले खमताया पाऊपिंग मणिपुर चीफ मिनिस्टर क्वीर युमनान खेमचा न आज एनटीपी पैकेज 9 मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट स्कीम ही थकला कैना गरीन मी खमाई रिव्यू मीटिंग पमाइरा उखरू डिस्ट्रिक्ट ली खलै सोमसाइ करीसन वि असम राइफल केम ली डिस्ट्रिक्ट वि अलुंग ली सिक्योरिटी सिचुएशन गसिप मई खवाई वि मरम ली खरचान सारोमा kala india aina japan ngalei khaniwi annual summit high level talk changa cheki aj new delhi le singa haira ara pau ping mai saina ngang rum sa manipur chief minister kuir yumnan khemchan na than the deputy chief minister guir el tiko kala mla kuir leishang tem susendro maite ashirka thumda ntp package 9 manipur water supply project wi maramli machuk ngorum laka rural area pumping le मंगखवाई तर संबंखवाई वे इंफ्रास्ट्रक्चर कलर हर खल जीवन मिशन स्कीम वे आजिंगली शिम शिमली हाउस होल्ड टैप कनेक्शन मी खवाई कथा कुलुंगली स्कीम ही गरीन मी खवाई मचुक लुशी थायरा एम ची एन आर एच ए वे आई ना मिंग फो कथर गचे कहाया विकसित भारत गरंदी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वी पी जी आर ए एम जी स्कीम ही आज बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट विप डिप्यूटी कमिश्नर कुलुमला इलांगबम बुचा न स्कीम कथर ही मिनी सेक्रेटरियट कॉम्प्लेक्स हॉल खामू शोमी हायरा कला इम्फाल वेस्ट विप डिस्ट्रिक्ट लीला चीफ मिनिस्टर कुर युमदान खेमजान स्कीम कथर वी बी जी आर एम जी ही थरकत थरकत साखमी रानी हिली एम एल ए पिंग कला सीनियर ऑफिशियल्स पिंग राजंगमी कला सेनापति डिस्ट्रिक्ट आईना चुराचंपुर डिस्ट्रिक्ट लीला डिप्यूटी कमिश्नर्स पिंग स्कीम ही थरकत सामी उखरू डिस्ट्रिक्ट ली खलै सोमसाइ गरीसन वि असम राइफल के एम ले आया असम राइफल वि डिप्यूटी जनरल न मखोकमीद उखरू वि डिप्यूटी कमिश्नर आईना सुपरिन्टेंडेंट ऑफ पुलिस कामचोंग डिस्ट्रिक्ट वि डिप्यूटी कमिश्नर aina superintendent of police senior government with officials being kala intelligence agencies being zangda ariri road kamarat shokta khalai atam hili security situation we maramli tukla kaina kharchan sarumba kala security situation hi mathamai da shongja khuibai mai khwai security forces being civil administration kala intelligence agencies being hi atam atamli mathamai da whatsapp room palungra da mayang roka लाखसोंग मणिपुर वि चीफ मिनिस्टर कुर युमनान खेमचान न मखोकमीद आया इम्फाल वि सेक्रेटरियट ऑफिसली एनसीपी वि डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल कल एडिशनल डायरेक्टर जंग द एनटीपीएस एक्ट 1985 वि आजिंगली इंटेलिजेंस कैटरिंग कोऑर्डिनेशन मथा मई खवाई स्टेट एंड इंटरनेशनल एजेंसीज मकंग मई खवाई कल ड्रग ट्राफिकिंग सिमित खवाई हिग थथावी मरामली खोख सद नर गुरुम्र ल सोंजाखई गुरुम्र मयांग रोक नागालैंड टूरिज्म एंड हाई एजुकेशन मिनिस्टर गुर देमचान इमना अलोंग कल अलिंग सोद साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजर गुर खुजो लुजु नेनु अने आया न्यू दिल्ली यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ली संपंगद नागालैंड गलैली थै सिराई चुंगला कैना संबंग खवाई वि प्रोजेक्ट चोशोक मी खवाई गकावायरा कला हिलिंग सो द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी कला कॉलेज पिंगलेला अपोंग तै दै द स्कीम मी खवाई कला इंफ्रास्ट्रक्चर आइना फाइनेंशियल गचोन मी खवाई ला पोहायरा त्रिपुरा गलैली आया हंग थुरुक त कथुम का कशुम फाउंडेशन ते हे त्रिपुरा लोंगशिमली महोलाक आइना मयोन हायरा State Foundation Day we ran ye hili Governor Kuilumla Indra Sina Reti Nalu na Matuimida Gahang Longshim we hangvu bing na Tripura we Democratic Journey hili Mathalak aina Shongsang Kuimida Ngalai hi Ngaziplak Gahai Democratic Ngasantalai da Hangmiya Nganada glai paupung hi Akashwani Imphal weena Chuhomida glai na Arunachal Pradesh ngalai li मंग साम लिंग बंगला कैना रो हौद ब्रह्मपुत्र रिवर कोंग वि तर पेमका ममान हौद Kaziranga National Park hili tar kaphong mara shok khabai Arunachal Pradesh sarkar na artificial intelligence technology shichen laka tar kaphong mushok khabai mathalak aina khangran sadlai Dripura angalai le ariari national highway shongfu shemda khalai chili central na migyan zangmi da transport infrastructure kujungka rum sangkhami aina ga soda national highway kathar shongfu shemkhawai we project pingla midalai da chief minister kuir dr manik sahana aya phongshoka kathar project singa ki da khalai national highway hi northeastern apam pingli ngri khawai langmai da khangatai kantri ngalai thari pingli ngri khawai shortcut we ningrin akhana Prime Minister Kuir Narendra Modi aina awi Japanese counterpart Kuir Senai Takaichi anina ajuwi Delhi li ngalai khaniwi annual summit high level talk janingasek kuigaya aniwi janingasek chili khamataiya ngajegra na agenda pingjiya regional kala global issue wi pongli ngahyauli shitta khamishit khamono wi alongli yariwi ningrin ungshung khawai tulep khuya kala ngalai khane we special sala kahai india aina japan strategic kala global partnership makang mai khawai lang mai da indo pacific we od manga pingli what sa krum ching da khale acham aram hi mashiman la ngalai khane we kan khana sambang khawai mayang ro ka japanese we prime minister kuir senai takaichi na india ngalai le ungjang la ka aman sakla kahai official meeting ka sahi awi khare thochan ngsa da lai delhi apamli aching thor churwi chingrot sambang da city ka dong ali ka sa kala hup khlang wi ayat suidang sak da lai india meteorological department da chithai khamiya thi shu da delhi haryana chandigarh gujarat madhya pradesh uttar pradesh kala rajasthan ga lai ping chur ka jang wi ka jing kro hopo khaira Lagosong, Karnataka, Konkan, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh, Kala, Maharashtra, Abam Bingle, Mangasamla, Gazing Bangla Kaina, Kro, Sambang Rada, Chitai Midalai. Asam Kala, Arunachal Pradesh, Gale, Kani Hili, Turuka Pongli, Sazaka Hai Bingle, Sandra Shokana, Kangajon Mirada, Ayavau Shokahina. Gale Kani, we district Bingwe, Lui Bum, Shim, Tongtang, Kashiman, Kala, Taishirai, Tsakshi, Gazaka Hai, Hekatata hi Central Shorkana Ministerial Team Choda Aerial Survey Kala Inspection Chatta Assembly Turuk Pongwe Aina Ngayin Khabai Shim Ting Hangpanga Sagazam Mihaira Kala Mi Akha Tihaira Kala Arunachal Pradesh Li Mi Ting Hangchiko Relief Camp Li Pamdalai Achu Pao Manga Changrang Laga Latrida Khamataya Pao Ping Pamili Shitli Manipur Chief Minister Kuir Yumnan Khemchan aaj NTP Package 9 Manipur Water Supply Project Scheme hi thakla kaina ngren mi khawai review meeting pamhaira Ukhru district li khalai samsai garrison we Assam Rifle Camp li district we alungli security situation ngachip mai khawai we maram li krachan saroma kala India na Japan ngalai khane we annual summit high level talk Chanika Zekhi Aje New Delhi Singha Haira. Aje Pao Hilinga Chang Haira Pao Pingye Agashwani Imphal Wena Chua Khamina. Araitumna Hunka Wivang Gwira M. Ungrin Lan Singh Divisional Forest Officer Manipur Forest Department na Van Mahat Safwi Maramli Chanpai Khami Nganangarumsa Chua Mili.
1: Like ya jimik sho ngana da klinitum psycho really salam khmi aina so da iwi ming na m ungrin lansing divisional forest officer manipur forest department na ats na tumli van mohotsav we maram kasuka chanpeng room se kare sa da manipur forest department we mathun sa da ina na tum gato ngali ats we special sala kahai van mohotsav 2026 india we tingrong we kumai we radio chanpei hili Welcome sadalai kumai kumai hi kum kachi dawi marang kachang july we khare jimi show aina hopok laga kashne jimi shu pao india ahubu jangda tingrong khling and khangak we on ngarut sada mayona kumai kumai hi khare sada 1950 we jingumli kem munsi ko ho yesho hina hogo phogna ahi atam chiwi union minister of agriculture sasaya kala ana ngohongwi kankhana kala katha da ngakra khachili yarili thekhui khawai wi ningrin aina nidrei hauko phogna legacy ang so nauping thingrong hia ithumi machithat kapaya mikumo akhwi kharing kharak wi songfuna thingrong na ithumi khaksui khaksui khawai msi himia ithumi msi magathar kala thermathengmia leimin kala soil erosion la malaing sakmana tarila kanjab sami kala sayur va yulila athumi ngayin khawai shimmiya azui ogatui hili ithumi kasik kasa khangachei climate change magathar masi masa pollution kapem kala ngohong sakashiman deforestation hina ithumi khamataya concern sa haukida thingrong khaling kala ngohong khanga ki henmeida or matai meida dagar sa haira van mahotsav or thingrong wi nidrei hi marang gachang wi hapta kharele sahau khla gji chikha jur gachang sahau da jur gachang hin na thingrong anauping ring shok wi wang cha makeup gji atam masaya school colleges government with department ithumi cso skala ithum yarisan na janglaga ningsangla aina thingrong khaling wi otsin yarili tam gji thei yarisan khang han kalak conservation campaign hi singkadale manipur forest department la ajkum la nidrei hi haglak aina mayon khawai khangran kupsar haira Nidrehi, Forest Department with Shimkrukatong and Zangda, July 1st to 7th, Hilimyonra. District Jivalina, TFO Natanaga, District Jui DC, SP Kala Kangatei officers, school and colleges, Prenausen, Kala Yarikatong and Zangda Mayonra. Forest Department Azukumi Nidrehili, Tingrong Lak, Ting Tadapanga Ling Sankavai Kangaran Sahira. Megajivuna Nidrehili, Itumi Ngohong Kala. Thingrong we kan khana thekhui da ra da khalai khring kharak matha sang khwai honna rumsa state level aina sada tarik shinili imphali itumi nidriwi kakup khangajang program haklak aina singka khwai la ngaranping aina leidalei van mohotsav we khamata ya chanpau hiya thingrong nau akha ajiling sang kahai hiya nauthot pingli gif sada panglan ka sa kathana khasho kahai thingrong akha hina itumi msi thang sagra Sayur vayur ling chon mira kasik kasa suta ngasak mira kala ithumi environment lila mathamai ngasagra. Ka hitai jilila lingasang mangmachila ithum tingrong jili yengasang kala khangak odhi sada lingsang kahai tingrong hi mathalak aina haksang rarsang khawai hotnara. Nanamida kalai legashiya richum nauping natumli hangaya lalwida. Atsuwi van mohotsa fili ithum ichicha ngashit akawi lungli. Itum tingrong akamang lala lingsang kawai. Tingrong ji atheirong sasapai, awonrong sasapai, or any tingrong sasapai, ka itumiram li samgapang, kare aina legasa tingrong atheirong lingsang kawai, honasa. Itum pening unse, itum environment kangaki government mangwi odngarut na machi haisa, ka itumi avavu wi sara nada kuisa. Odngarut yaw lapai, hag lapai, itum katonga na zanglaga, sakashok taran, jiwi heyun la hag maikara. Itum na aze tingrong kaling hina akamawi, mata kamay, ter kamay, kala kashung kamay, India nga sa kawaina. Itum katong na zang da azukumi van mohotsav 2026 kamahaya nidre nga sa ngasak laksa, kala itum na iwi nga sot nao ram nao pingay tingrong ling say, ngohong ngatang kwi say, kala mirin kan kwi say gachi chanpaw hi jipun misa. Ning shilak hayra nganami da kalay na tum katong li jayhin.
0: Arilangana lishitsa S. Raikan galang sanopina kasa lishatla. Nganangay da pokra ping jia. Litanwena sochipi singlai galawi yarnaubing. Pungyarwena Raikan, Shangshim, Ngatingkwi, Soringam, gala shangmi atumna. Nganangay da pokra na jihomili nganangurumsa.

हयंगे युग पुंगी पाल मिनी नी फूचत पमतम दा मणिपुरी फिल्मी सही फनिन प्रोग्राम लकुचगनी ngai khota ki si pung mapal makhai ayeng ayu pung tara manipuri matami sei khonjel da sagol samsana thoi amadi kurbani chaudhuri mayum ayeng nimi ma pung tara ni thoi ta ba matam da channel sigani sib thorom pareng sando pahu jagani thorom pareng gi nimi yung matu mine tara chat pa matam da lan thok sagani saktam umang pung tara ni thoi mine ni phu हलो मणिपुर हक्सल थमजरी सक्सु फजहनबा लेजर की थोदान एक्सपर्ट ओने लंगसिन बिगदबा डॉक्टर नवकिशोर हविजम कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन सिजा हॉस्पिटल पुंगम मिनट तारा निथौजम मेंजोर सिंह सकप नोट अमुकनी पुंगम मिनट कुन मंगा स्वयंबंदा चनुगी खोजलगी मणिपुरी मतम इसई वेस्टर्न म्यूजिक महुसा गुम लानगनी हयें नुथिल पुंगम मिनट नेफू पुंगनी मिनट तारा सकनाइरबसिंगी वारी लानथोक्सगनी।

단즈키바 이세이스기 콘탕 쿤드락범 라메스쿠마르기 바이올린기 콘탕드게 코이프나 목다미네시

अमुक्तं उनगे थलिनेसिदा सैसकप ओइनाम स्वामी कुमार गे खंजलदगी थिंगबाई जम सरंग कुमार ना सेरिमम तमिसे तमिनेसि।

0: ꯒꯣꯇꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯁꯟꯙ꯭ꯌꯥꯔꯥꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩꯗ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯩꯁꯩ ꯊꯥꯕ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯇꯥꯇꯣꯟ
1: ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ
0: ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯆꯜꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯗꯁꯨ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯅꯁꯥ ꯃꯨꯛꯠ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯗ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯆꯜꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯖꯔꯨꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥꯅꯤ
1: ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ
0: ꯅꯁꯥ ꯃꯨꯛꯠ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ 2026 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯂꯥꯏꯕꯂꯤꯍꯨꯗ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯅꯤꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯅꯥꯏ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯑꯃꯅ ꯉꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯂꯥꯏꯕꯂꯤꯍꯨꯗ ꯃꯤꯁꯟꯅ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯇꯤꯡꯅ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 13 ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 26 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯂꯥꯏꯕꯂꯤꯍꯨꯗ ꯃꯤꯁꯟꯅ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ 9ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ 59 ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁ 2ꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯔꯦꯂꯤꯁ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯕ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯈꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯖꯔꯨꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ
2: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝ ꯊꯃꯥꯄꯇꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯅꯁꯥ ꯃꯨꯛ ꯚꯥꯔꯠ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤ 2020ꯒꯤ 15 ꯑꯣꯒꯁꯇꯒꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯁꯥꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 272ꯗ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 272 ꯈꯟꯒꯠꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ� ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 9 ꯌꯥꯎꯔꯛꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯑꯃꯥꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ 2025ꯗ ꯅꯁꯥ ꯃꯨꯛ ꯚꯥꯔꯠ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯆꯍꯤ 5 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯁꯥ ꯃꯨꯛ ꯚꯥꯔꯠ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯦ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯦ ꯑꯒꯦꯟꯁ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯂꯤꯁꯤꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯀꯤꯡ 2026ꯀꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯁꯥ ꯃꯨꯛ ꯁꯞꯇꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯨꯟ 17-26 ꯖꯨꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯝꯅ ꯅꯁꯥ ꯃꯨꯛ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄꯍꯤꯆꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯤꯛ ꯂꯣꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ 2025ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ MSRLMꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯁꯥ ꯃꯨꯛ ꯚꯥꯔꯠ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯦ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ MSRLMꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CLF 9 ꯂꯩꯔꯤꯕ BLFꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯤꯁꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯦ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯁꯦꯜꯐ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯀꯣꯌꯥ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯧꯍꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯑꯃꯥꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ MSRLMꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ
3: ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯁꯤꯔꯤꯃꯇꯤ ꯍꯩꯈꯥꯝ ꯖꯥꯟꯗꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤ
1: ग्राम जीविका डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर इम्फाल ईस्ट पोरोमपाट निशा चाब नुमें कयाद सैथें क्या पीरी लाइरिक लाइसु तब मसादा अनाब क्या नाहलपी फाव मांग याब क्या पीरिबनी भारत सरकार नशामु भारत अभियान मनुजन्ना पोस्टर कैंपेन चतरीबनी पांथोक्चरीब ड्रग लान सिजिनबगी मायोक्त चतरीब पोस्टर कैंपेन पिजनिंगीब मेसेज दी नारोल अमदी प्रजा सिंना ड्रग लान सिजिनबदगी मांगथरकलीब कया मरुओगी नारोल सिंगी कायथरकलीब असिदगी थिंगननब मसीगी पोस्टर कैंपेन चतजबनी पोस्टर कैंपेन असिना मरम ओइरगा प्रजा पुंबा भाब तामिनदुना पुन्ना थौदांग लोमिनरसी अमसुंग नारोल सिंगी तुंगी पुंसीदा तिंजं कायजंदब समाज अम ओइनब अखुइ पुन्ना होनमिनरसी
3: आईगी इमिंग मयांग नंबर गन्य प्यारी देवी कौी आई टॉप दूसरा ग्राम पंचायत असीगी पंचायत सेक्रेटरी होना लेजबनी तंग कुंगा था तरुक 2026 टॉप दूसरा ग्राम पंचायत की मनुंगदर लेवा टॉप दूसरा यारन बीएलएफ ना सिंजदुना बाल सभा असी पांथोक्जबनी नुमेदसीदा बाल सभाग मरी लेनना नसा मुक्त भारत सप्ताह हाइबदी सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एबूस एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग हाइब प्रोग्राम आंगांगसिंगीदमक्त हाबजबनी नुमेदसीदगी अखोइना आंगांगसिंगद पिजनिंगब मेसेज दी अखोइ ड्रग तगी लाबथोअग लैनब अखोइ मियोइबगी हकचांग मांगहनब ड्रग तगी लाबथोअग लैसी हाइबसे आंगांगसिंगसिद अखोइना पिजनिंगबगीदमक्त याम मरु ओइना अखोइना बालसाबासिद हाबजबनी
4: मिंग प्रियता लक्ष्मी थिंबाई जम हौजी क्लास 12 तमजरी जून 25, 2026 यफरब नुमित टॉप दूसरा यारल बी एल एफ ना 2024 अगस्ट 25 फॉर्म तब अखोइ नुपी मचा बाल सभा कमिटी हाइना मिंगथोंब कमिटी मरी लेनना नोमगी थौरम ओइना साइको सोशल काउंसलिंग हाइबर थीम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अमदी अते खंग हैरब कया सिंग कौबिदुना ममल यामलब लौसिंग कया फंगहनबिब अमदी मतम असिदा एखोय इंखलकलिबि नुपी मचा सिंगना करी तौगदब अमदी तौरदब कया मरम खंगहनबिब अदुकी मतिक पेनजे मतम असि लुरे खंगना खंगना एखोय इंखलकलिबि नुपी मचा सिंगना उना उना तान ताना फत्तब लंबिद चंगसिनब कया मरम थेंगनारि मसि पुंबसे करम कनगदगे इसाबु करम चेक्सिनजगदगे हाइब कयामरुम ताकपीरी असिदसुनतना वाखल पुक्निंगबु मतव करमना नुंगाइना अमदि फना थंगदगे हाइबगी मतांगदसु ममुतान हाइबिरमी मसिमक ngakna अमदि खंगन चच्चगनी हाइनासु हाइजरी असिदसुनतना नसामुक्त भारत सप्ताह गिमखादा निसा थिंगब अमदि निसागी अमांगब कयामरुम खंगहनब ओइना रेली अमसु चचै असिगुमलब वाखलौसिंग ओइरब प्रोग्राम असिबु सिनबिलांगबिरिब अखोइगी टॉप दूसरा यारल बेलेफ पुसु हाइनिंगाइ लेतना थागत फोंदोचरी मतुंगदसु असिगुमब कानारब अमदि यामना नुंगाइरब थौरम कयामरुम सिनबिरखो हाइना कमिटीगी मेंबर अम ओइना हाइजारी
5: आममक्तदै मयामु करमजरी आइगी मेंगु कोइजम कविता कलेपा वुमेन मटे पर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की प्रेसिडेंट लोइना थौपुजरी मिनिस्टर ऑफ सोशल एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मखाद नक्शा मुकत भारत सप्ताह की सेलिब्रेशन पांथोपा कलेपा वुमेन मटे पर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ना सु ड्रग एब्यूज तौबना सोसाइटी क्राइम हेंगलप डोमेस्टिक वायलेंस हेंगलपदगी थिंहौननब हाइरिब ड्रग सिजिनबसिना समाजद पीरिब जैथें मयाम निशा सिजिनबसिनासु हक्चांग सोहलप हाइरिब मयाम असिदगी थिंहौननब हाइदुना कंलैपाक सेलेप की मखाद लेरिब बेलेप सिंगनासु प्रोग्राम असिबु सेलिब्रेशन असिबु पांथोक्सखरे बेलेप लेवेलद रिले कैंपेन पांथोक्तुना हाइरिब सेलिब्रेशन असि पांथोक्पद सरुक याजेखि
6: आइगी मिंग कोनसम सुनीता कौई अदुगा आइगी लैफमना खुराइ कोनसम लेकाइदगिनी आई इसामक एसआईजी की मेंबरनी आइगी एसआईजी की ममिंगना पांथोइबी कौई अदुगा ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯌꯦꯅꯤꯡ ꯍꯨꯟꯕ, ꯁꯦꯜꯐꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯏꯇꯥ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯔꯄꯣꯁ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯞ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜꯐ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯗꯤꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯕꯦꯂꯦꯞ 23ꯗ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ. ꯕꯦꯂꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ 20 ꯖꯨꯟꯗꯒꯤ ꯅꯁꯥ ꯃꯨꯛꯇ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯍꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯊꯈꯤ. ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯊꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯗꯅ ꯂꯧꯕꯒꯨꯝ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯏꯄꯥꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯟꯖꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ. ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯣꯊꯅ ꯂꯩꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯌꯥꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ. ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯝ, ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ, ꯍꯦꯜꯊ ꯆꯦꯛꯑꯞ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯏꯃꯨꯡ, ꯑꯐꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ, ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ.
7: ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯤꯡ ꯃꯨꯇꯨꯝ ꯁꯅꯥ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯀꯧꯏ. ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯒꯣꯜꯃꯥꯡ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟ ꯋꯦꯜꯅꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏ ꯋꯥꯡꯃꯒꯤ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯁꯣ ꯅꯔꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯁꯥ ꯃꯨꯛꯇ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔꯒꯤ ꯄꯂꯦꯟ ꯁꯤꯡꯊꯥ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯂꯦꯚꯦꯟ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯩꯁ ꯖꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯐꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯗꯅꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ, ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯆꯦꯛꯑꯞ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯁꯣ ꯅꯔꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡ, ꯐ꯭ꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯆꯦꯛꯑꯞꯁꯤꯡꯗ ꯚꯤ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯐꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ. ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ.
5: ꯏꯃꯤꯡ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯩꯐꯝꯅ ꯀꯣꯡꯄꯥꯟ ꯆꯤꯉꯥꯝꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ. ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯒꯣꯜꯃꯥꯡ ꯄꯤ ꯑꯩꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟ ꯋꯦꯜꯅꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯃꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯋꯥꯀꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯁꯥꯃꯨꯛ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ. ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯏ ꯖꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯟ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯏ ꯖꯤ ꯃꯦꯝ꯬ꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯐꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯅꯕ, ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯅꯕ, ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯆꯦꯛꯑꯞ ꯇꯧꯕ, ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯆꯥꯍꯧꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯐ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯆꯥꯍꯩꯗꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯗꯅꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯁꯥ ꯋꯥꯀꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ. ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯏ ꯖꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ.
8: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯐꯨꯔꯂꯥꯠꯄꯝ ꯀꯕꯤꯇꯥ ꯀꯧꯖꯩ. ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯅ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯇꯣꯞ ꯆꯤꯡꯊꯥꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯦꯂꯦꯞꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯕ ꯚꯦꯂꯦꯞ, ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯂꯟꯆꯦꯟꯕꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯀꯧꯖꯩ. ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯕ ꯚꯦꯂꯦꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯗꯤ ꯀꯦꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ. ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯁꯥ ꯃꯨꯛꯇ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯏ ꯖꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ 109, ꯅꯟ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯏ ꯖꯤꯗ 20, ꯑꯁꯥ 5, ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯑꯥꯏ ꯃꯦꯝꯕꯔ 5, ꯁꯤ ꯑꯩ ꯁꯣ 1, ꯑꯉꯥꯡ 20 ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ 5ꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯤ ꯄꯨꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯊꯦꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯅꯤꯁꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯈꯤ. ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗꯦ. ꯅꯤꯁꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯒꯨꯂꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯇꯂꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ. ꯅꯨꯄꯥ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯇꯂꯕ ꯀ꯭ꯋꯥ, ꯌꯨ, ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ. ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯂꯩꯔꯛ ꯈꯨꯂꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ꯫ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯩꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯁꯟ ꯊꯛꯆꯟꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯐꯨꯕ ꯆꯩꯕ ꯑꯣꯠꯄ ꯅꯩꯕ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯕꯤꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯊꯦꯡꯕ ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯆꯥꯃꯁꯨ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯝꯗꯨꯅ ꯄꯣꯊꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯁꯜꯂꯒ ꯍꯜꯂꯛꯂꯒ ꯑꯣꯠꯄ ꯅꯩꯕ ꯐꯨꯕꯤ ꯆꯩꯕꯤꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯌꯥꯔꯦꯛꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯥꯖꯤꯟ ꯁꯌꯥꯗ ꯂꯦꯛꯇꯨꯅ ꯃꯄꯤ ꯏꯔꯥ ꯀꯪꯗꯅ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯛꯄ ꯉꯥꯏꯅ ꯂꯦꯟꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯌꯥꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯀꯌꯥꯅ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯂꯤꯊꯣꯛꯄ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯐ ꯐꯠꯇ ꯈꯟꯊꯗꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯍꯨꯔꯥꯟꯗꯨꯅ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯄ, ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯀꯩꯔꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯊꯪꯅꯕ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯁꯃꯥꯖꯇ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯁꯥꯃꯨꯛꯇ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ꯫
9: ꯑꯩ ꯃꯤꯡ ꯖꯁꯋꯜ ꯁꯤꯡ ꯁꯨꯁꯤꯜ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡ, ꯌꯥꯏꯄꯣꯛ ꯇꯣꯞ ꯆꯤꯡꯊꯥ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 5ꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯅꯣꯃꯤꯅꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯁꯥꯃꯨꯛ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯠꯇꯦꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦ, ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯍꯟꯕꯗꯤ ꯆꯪꯉꯤꯗꯅ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕꯅ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯨ ꯑꯍꯟꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯪꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯁꯥꯃꯨꯛ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯃꯥꯖꯁꯤꯗ ꯄꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯃꯥꯖꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯁꯤꯕꯁꯦ ꯌꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯄꯣꯛꯑꯦ ꯌꯨ, ꯁꯤꯔꯤ ꯌꯨ, ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯦ ꯌꯨ, ꯆꯥꯛꯀꯧꯔꯤ ꯌꯨ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕ, ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯝꯇ ꯈꯪꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯊꯤꯡꯕꯤꯕ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯖꯅꯤꯅ ꯈꯟꯖꯩ꯫ ꯑꯐ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯏꯄꯥꯟꯗꯨꯗ ꯌꯨ ꯊꯛꯆꯤꯜꯂꯅꯤ ꯀꯣ ꯉꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯅꯤ, ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯤ, ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯈꯪꯖꯗꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯆꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯨ ꯉꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯈꯤꯕ, ꯁꯤꯈꯤꯕ, ꯅꯥꯈꯤꯕ, ꯁꯣꯏꯅꯔ ꯂꯩꯕꯣꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯏꯕꯟ꯫ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖꯁꯤꯗ ꯅꯤꯁꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯤꯁꯥꯁꯤꯃ ꯑꯦꯅꯤ ꯊꯤꯡꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯃ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ꯫ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜꯒꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯤꯁꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯨ ꯊꯛꯆꯤꯟ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯥꯎ ꯈꯣꯡꯗꯨꯅ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯤ ꯇꯨꯖꯨꯡꯕ, ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯣꯛꯍꯟꯕ, ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯛ ꯈꯨꯂꯛꯇ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯔ ꯂꯩꯔꯝꯕ, ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯇꯣꯔꯆꯔ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯅꯁꯥꯃꯨꯛ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯛ ꯈꯨꯂꯛꯇ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯁꯇꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯔꯦꯜꯂꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗꯤ ꯎꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ, ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯁꯜꯂꯒ ꯀꯣꯛ ꯄꯨꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯤ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ, ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯦꯟꯗꯕꯗꯒꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯁꯜ ꯊꯛꯆꯜꯂꯒ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ꯫ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯁꯥꯃꯨꯛ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡꯗꯁꯨ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯔꯛ ꯈꯨꯂꯛꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯃ ꯆꯠꯆꯔꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ, ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ꯫
10: ꯑꯩ ꯇꯣꯞꯆꯤꯡ ꯊꯥꯡꯒꯤ ꯁꯦꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯖꯔꯤꯕ ꯈꯥꯡꯉꯕꯝ ꯕꯦꯗ ꯗꯦꯕꯤ, ꯑꯩ ꯆꯍꯤ 2019ꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏꯗꯒꯤꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯡꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯃꯁꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯥꯏꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯦ, ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦ, ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯨ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯦ, ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯁꯇꯤꯒꯃꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ निशा है ड्रग एब्यूज की कामबू से मुथत्कदे अमन सोशल वर्कर की टाइप अखोजे इसब थादे है थबक से वा खुन तम तारगे अहोंब क्या पूरप गमगनी है खजे अखोने पंगा लागत फबगदू नए इमुंग निशा चाब इचा इम इपुर अहल इकूबर मैमरीबनी है इमुंग सेमटोप गमद्रगक कमाय सेमटोदन है क्वेश्चन हनी सेल्फ सेक्टर की ऑफिशियल फंग ड्रग चाचल यू थल बी पी वन गे हिदाक फंगद्री कई है प्रॉब्लम मैंने अखोजु एब्यूसर कराई मांगे है इचा इस हयंग तमंगे ड्रग एब्यूस अखोने कमानदे है एब्यूस एडिक्ट कामबूद सेंटर मैं लेरीदनको अद्दीज इंफॉर्मेशन तौर है ड्रग तक कमाय नाथर थम्बीदे ड्रग अब कमायन थादे है हेल्थ डिपार्टमेंट तोना मोई की हिदाक्त की महु टेब्लेट महु सिल्प कंट्रोल तब गमु सिल्ब फाउी प्रॉब्लम लेहम से कराइन है इमुंग मनु इचा इनाव मैं थोड़ी है यौसलने की लौ इस थबक सूर वारे निशादनीखे ये यादव नए नाथोपना कई गांगी कई तौनी आई कई खोप लो यू मांगबने से तौरी है हेन थकते हेजल्लबनी प्रॉब्लम से अखोने कमायन नाथेगे नुपान हिदा थकू लेपू है यादे थकनी हेन थकरद नगे चाक चाब चैचा हाईजा मैं ग्रुप मीटिंग तबदे थकद टेस्ट तौदी नं तीनर खोल सोसाइटी तीन यौद्रे खोत्रे इवन से अंदोद्रबनीको तसेंगे चैलेंज तब खाई पोतु नईना टच तौब यादे हैदे नई मीटिंग नग चाक चाब अभी कौथो चप गमेबको अमायनाबी स्ट्रेंथ लेपीदबनी ड्रग एब्यूस इसान इसब कंट्रोल तब गमी इचा वारप गमगदरीबनी निशा मुक्ति भारत की कैंपेन सरेगो कामबून अगर प्यारा मेम्बर अगर से हाजरी पोसीना अनी कंपाल तौर चमीनग लेकिन वेंडर मचा मचा ड्राइव तबीतागे यामन अफब मौन पुरकनी चौखटपदम अफब पुरपद अयाग पाजगे है इसमें मैम फोदी
11: इमिंग राजकुमारी विनीसना देवी लेफमना कॉमन जो नंबर फाइव तगे मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन की मखाद सेमजब थोंजू अपुनब वुमेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की मखाद लेजब इमापान थोबी बेलेप की सोशल इंक्लूजन सोशल डेवलपमेंट है थेमेटिक केदर में थोपुजरी अखोना पांथोक्चरीब प्रोग्राम अखोई समाज असिद निशाना लाइ चूरब मई कया की कन्नबी पांदम नशा मुक्त भारत अभियान की मखाद प्रोग्राम सिंजबनी प्रोग्राम हेल्थ डिपार्टमेंट की रिसोर्स पर्सन सिंह पीआरआई मेंबर सिंह क्लब मेंबर सिंह छात्र छात्री सिंह पुनः अखोई प्रोग्राम सिंजकीबने प्रोग्राम व्हाट्सएप लौमी पोस्टर कैंपेन तौना रैली क्या चतना प्रोग्राम पांथोक्चकी लोइनना लापीरिब रिसोर्स पर्सन सिंह माइकैदगीसु यामना मरित चुम्मब वाफम सिंह काना कानरब वाफम सिंह थंबिरमगिदमक्त मेंबर सिंह माइकैदगी थगत फोंदोक्चरी ममांग ममांगदसु डिपार्टमेंट सिंह सेंबिरकप थबक थोरम खुदिमक्त अखोइगी मेंबर सिंह सरु यादुना लाक्जरी मतुंग तारकपदसु अखोइगी समाज असिद तिंजंग काइजंगदब समाज अमु ओइनबगिदमक्त अफब खोंथांग लखपिरकप खुदिमक्त अखोइगी मेंबर सिंह सरु याजगनी हाइबसि हाइजकि
12: वैरोकुम बिनोलता इसाम बासिगोंग ग्राम पंचायत की चेयरपर्सन नी बासिगोंग ग्राम पंचायत की मनुंग फाइव बी एल एफ मैरापाइबी सिंह क्लब ऑर्गनाइजेशन सिंह पुनः खुसमना निशा मुक्त भारत अभियान है बेनर असिगी मखाद निशाबु मरु फंगना मुथत्नबगिदमक भारत सरकार सिलक्प प्रोग्राम असिगी मखाद बासिगोंग ग्राम पंचायत की मनुंगदसु पांथोक्चकी हाइरिब प्रोग्राम अखोइगी खुनाय असिद निशाना मांगहनब होगलक्लिब जुटसिंब मरु फंगना मांगहलक्प असिगी खुनाय कन्नबगिदमक हाइरिब अवेयरनेस पांथोक्चबनी अवेयरनेस अखोइगी मरिक चुम्ब वाफम कया सकनायरब मिंगोइना पंजरबद अखोइगी डॉक्टर धनवीर लाइश्रम अमदी हेमंत कुमार निगोम्बम अनीनसु अवेयरनेस असिद यामना मरिक चुम्ब कया हाइबीदुना निशा चाबना मांगब अमदी निशा चाबना खुनाय अमदा ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ, ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯗ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ. ꯏꯔꯩꯀꯥꯏ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡ, ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡ, ꯖꯨꯠꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯔꯩꯀꯥꯏ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯅꯤꯁꯥꯕꯨ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯨꯠꯊꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯩꯀꯥꯏ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯤꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯁꯥꯃꯎ ꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯅꯤꯁꯥ ꯌꯣꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯎꯗꯨꯅ ꯆꯠꯁꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯩꯀꯥꯏ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯑꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯖꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤ
13: ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯂꯧꯃꯥꯟꯕꯤ ꯕꯤ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯐ ꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯥꯁꯤꯀꯣꯡ ꯀꯤꯠꯅꯥꯄ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯥꯁꯥ ꯋꯥꯀꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯤꯡ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯇꯥ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯔꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯅꯤꯁꯥꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯨꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯏꯄꯥꯛꯇ ꯂꯨꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯨꯠꯊꯠꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯨꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯇꯤꯟꯖꯪ ꯌꯥꯆꯪꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯅ ꯂꯩꯍꯟꯁꯤ ꯏꯔꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕ ꯌꯣꯟꯕ ꯑꯁꯦ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯨꯠꯊꯠꯄꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯥꯄꯤꯟ ꯇꯧꯖꯔꯤ
14: ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯃꯤꯡ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯊꯣꯡꯂꯩꯉꯥꯟꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯆꯨꯊꯦꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯖꯕꯅꯤ ꯋꯥꯟ ꯗꯦ ꯅꯛꯁ ꯃꯨꯛꯇ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯤꯁꯥ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯁꯤꯀꯣꯡ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯤ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯐ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯌꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯎꯕꯤꯌꯨ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯗꯨꯈꯛ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯀꯩꯔꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯁꯥꯗ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ
15: ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯤꯡ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯊꯥꯗꯣꯏ ꯁꯅꯥ ꯀꯧꯋꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯅꯈꯣꯡ ꯃꯟꯖꯣꯟ ꯐꯥꯠꯇꯒꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯕꯤ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯐꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ꯅꯁꯥ ꯃꯨꯛꯇ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯍꯟꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯅꯤꯁꯥꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯒꯅꯤ
16: ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯤꯡ ꯅꯃꯔꯥꯛꯄꯝ ꯁꯩꯇꯕꯗꯤ ꯀꯧꯋꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯔꯥꯎ ꯁꯦꯜꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯕꯨꯗꯣꯛ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯚꯤ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯐꯀꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯇꯤ ꯀꯦꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯁꯥꯃꯨꯛ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯁꯥꯗ ꯂꯥꯏꯆꯨꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕꯅ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯛꯑꯒ ꯇꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯤꯅ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯂꯣꯒꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯎꯋꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯗꯕ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯗꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯦ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯌꯨꯝꯕꯨꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯎꯔꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯗꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯠꯆꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯔꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯚꯤ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯐ 10ꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯁꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ 100 ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡ 90 ꯅꯟ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯁꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ 15 ꯌꯨꯠ ꯀ꯭ꯂꯕ 20 ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯏ
9: ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡ ꯄꯔꯦꯁ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯀꯧꯖꯩ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯀ꯭ꯌꯥꯝꯒꯥꯏ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯩꯂꯤꯠ ꯑꯀꯥꯝꯄꯥꯠ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯕꯤ ꯁꯤ ꯑꯦ ꯐꯣꯔꯠ ꯁꯦꯝ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 10 ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯅꯁꯥ ꯃꯨꯛꯇ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯥꯞꯇꯥꯍ ꯊꯤꯝꯅ ꯅꯁꯥ ꯃꯨꯛꯇ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯋꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄꯍꯆꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ
17: awareness campaign as naha oiba ekhoida yamna informative oiba kanaba makhal gi awareness campaign aman awareness campaign asina nisha degi naha oiba ekhoina karamna ishabu ngakthokchani amasu makhoidegi ekhoina karamna nathai na chatkani haibadu marik chumna naha oiba ekhoida takpir awareness campaign asina nisha sinaba amasu nisha da laichuraba miyoi amana imung manung amasu khunai da piriba amang ata amasu asigum laba nisha da laichuraba mi singbu karamna loinagani karamna wari sanagani haibdu marik chumna takli asuki mati kanaraba informative oiba awareness campaign ashi toina pangthok chahaningi thagachari
18: aigi ming prasun guhangbam ai nelit imphal akampa ta bca 4 semester taujari ngasi gi awareness program ashina imung manung amsung samajta nishana piri baje thengi maramda khangalli ai isha nisha sinari tongju si sinya gahana khanjade ngasi samas sa nisha sinnare birba punmakna nisha thadoktuna samas sa bulu nanba samas ama ohnaba honasi ngasi gi awareness program ashi yamna kane ngasi gi awareness program sinbirba punmakpo and thagap phongtok chare
19: aukiba july gi tarik kun gi mathoi malam sin tungna pangtokpa international day against the drug abuse and illicit trafficking haiba danglalwan ba musung yonba madi sab singa simaru phangna muthana bugidamak un charter gi matungni na sin kiba koi thoramasi rapti mamang lakai gi nauna ko gi samjaba blf ano winning na sin biduna pangtokiba thoramasi su ai samak saru jasaki ai kyanga muslim rapti gram basat ki one number 6 ki member konsan pre kumar haiba thoramasi aisa sauda jakhib galuna sugumba ogi hojigojigi tangdule tadaba manipur gi situation nasida ano winning sinbi duna pangthok kiba khogi lekai lamdam singa sida nishana baram oiduna mang takadoba munung ka gadaba awaba takadoba mayam singa sidigi ngak thokna bidamba miyamda nisha sawa musung yon muse phatte musung masina prithibi se no mota no mudi mulakkani haibgi pandamamagalun sin kiba thormasida isa su thar yajaki yarai ojari ba khoi ge punna kusam naraga matamatam gi lakpa miyam da hena kana ga da ba thabok thorm sin koi punna simina ba da koi punna kusam naraga samina jari loinana asugumba thorm sin asibu miyam da mitna kong oina miyam da hena pau santok pi duna miyam da khangan biri ba gi akas pani gi le biri ba timbu soi thagad phongdok jari sigma thorm sing asi makata na sinbira polena khuna sanga matiang pangje gi haina ai tham jari anoba manipur ma sankana hona buda thabak thorm sing pangthum ina si haiba si asi ina menga pham da tham jari thank you
0: haiba campaign asida mioi lishing ani chatruk nifu marina punna saruk yakhi masida self help group ki member lishing amaga chamapan kuntaruk angang chaniyang khai naha marfu mari non SAG member chaniga marifutara nipana punna saruk yakhi line department dagi representative marifutaru khulgi makok thongba ahal singamadi PRI representative singsu saruk yakhi nasha mukt bharat abhiyan campaign drug free samaj ama oihanbagi khongjang asida social welfare department health department ICDS PRI MSRLM local youth clubs punna saruk yariba khongjang asina utli drug free samaj ama oihan ba haibasi aikhoi khuding gi daitani aikhoi gi ithaudang ni nasha mukt bharat abhiyan campaign da self help group nupi singna lobo thaudang haiba hiramasida tongan tongan ba mioi singa unaduna sabawari taminare taton
20: taminare
0: thoromasi bu puthokpana nongthombam romani taton ekoi gi khungangi thorongi matamsu loishilak lebanina thoromasiga loinana ngasi gi tamakdadi ichilupa muk hanana ba tawrasi
20: phani phani
0: khungangi thorom tabiram leba khudimakpu aroibo oina ichilupana
20: khurumjari

0: खुंगंगी थोरम ताबिरी अदोमन थोरम ताबिरी बासी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी
1: मैखु काप्थोक्पा फोगिंग तौबना डेंगी थेंब ngamloi
2: डेंगी हायरिबा वायरस नथोखन बलाइना मखलासी महिग यावरबा एडिस कौब कांग मखलमन चिकपदेगी नाहली कांग मखलासी अयुक नुंगथिलगी मतमदता अयाम चि ए
3: लायोंग सिंगदी अरुंगकन हौबा कोक यामना कन चिकप सरु सयांग चिकप मिटकी मनुंग थंगब सरुक्त चिकप नाब फाउबा माइ ngak अमदि थबाकी सरुक्त लाइथोपगुमना मपाक मपाक थोगलपसिनी
2: लैनासी ओइब्र खंगदोकनाबा रिम्स अमदि जेनिम्सकी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंटता ई चांगयंग तौथोकपियु
3: लैनासी दगी ngakथोकनाबा पामबै सिंगदी
2: अचोनबा फुरित फिरोल लिपियु अयुक नुंगथिलगी मतमदसु repellent mosquito coil electric vapormet na ching basing season abiu
3: season nadra ba hundok tona thamba patra sing tyre sing japu akai ba plastic cup kokta na chingba ising tungba yaba potlam sing thamdana ba hotna si
2: pau jenjeri ba directorate of health services amadi national health mission manipur
4: sairam college ki admission haujare manipur university de affiliate tauba ugc na su recognize tauba langjing achoba da laiba south asian institute of rural and agricultural management da BSc amsung MSc agriculture horticulture admission hojale akangnaba sit machingni nasimung laktona ming chanchen biho ekhoi contact number 7641811242
5: kaidra yusi da yam nana
6: da sing khaiga hiv test toruge doba
5: kaigina na bani dia hiv test tau doide
6: ibani lo homagi ahan masen haina khre ada ibani hiv test tau tho usena haina ramba
5: nabani di yam kuira daina khangnarakpa aduga kaigino hiv test tau doide nabani gi se amana amabu yam thajana dabai wani ne
6: adai nate da hiv test tok tok tuna hiv lei natraga lei te na khangto phai bese yamna phaba thabak ne masi hakjang phana leiba amadi akhoi ani gi tunggi pinsi gi damak ne aduna hiv test tok duna isagi hiv status khangto phai bese routine health check up gi saru amo hela dabane
5: aisu hiv test tok tok ning e duda kai gam positive oira ga di mayam na khangoi dro
6: hiv test tok phai bese confidential ne aduga nangi test ki result da kana mata da haido adu nangna aids ki maram da hena khangninga badi hiv helpline number 1097 da call do salo adagi aku pomaro loina khangani chalake ko
7: nawbia kai chalinu nangbo
8: iche ai common entrance examination pass tawre ba
7: yam phaine
8: adu da bsc nursing tam nabo college sam ta thiruge tawbe
7: adugi ore dinang karin to warun ai na hojik tam liba atmi college of nursing hiang hiren palace compound da leiba che asidagi hena phaba leitrabani
8: maram di cha
7: masagi hospital su leijaba matam ga chanara ba skill lab su leire well experience oire ba oja sing na ne takpi tam biri ba ragging free campus su oire ba tongan tongan ba boys amadi girls ki hostel facility su leire hena faribadi ne emi pay ki khodong chabasu leibani nawbi
8: asi am phainai se jodi
7: adune
8: adu Indian Nursing Council amadi Manipur Nursing Council na recognize taudaba da tamganu harisna kamain taubunu ja
7: adugi dine nan karim ta waruranu Indian Nursing Council amadi Manipur Nursing Council ne recognize taoraba institute ne haven obi
8: isai ngasi mak ming salurage
7: khujik mak chalo Acme College of Nursing hiang hiren leirak palace compound contact details 9436676980 natraga 6909158069
9: भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडलूम की सेंथंग मखादा मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सिंधुना हथकरघ मेला स्टेट हैंडलूम एक्सपो लाग्री थांगजा जुलाई मरी देगी इम्फाल इसकी नीलकुथी लेबा अरबान हत्त हौरगनी जुलाई 13 फव चथगदब हैंडलूम एक्सपो असिदा पुन्न स्टॉल हुम्फु हांगनी वीवर सिंह आर्टिसन सिंह कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंह प्रोड्यूसर कंपनी सिंह सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंह जेएलजी सिंह फेडरेशन सिंह कॉर्पोरेशन सिंह अमसुंग एपेक्स सोसाइटी सिंहना अप्लाई तौबग लोइनना हटकरघ मेला असिद लाक्तुना सरु यानबा मणिपुर हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर एलांगबम जितेन्ना खंगलकली
0: अदोमन थोरम ताबिरी बासी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी हौजिक नुमिदांगी पुंग तरेट मखाई तारे मणिपुरी द पाओ ताबिरसी
9: आकाशवाणी इम्फाल वायंगबम राजेश ने पाओ पाजरी ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯕꯔꯥꯖ ꯁꯤꯡ ꯆꯧꯍꯥꯟꯅ ꯑꯟꯗ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯇꯤꯔꯨꯄꯇꯤ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯤ ꯕꯤ ꯖꯤ ꯔꯥꯝꯖꯤ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯕꯤ ꯕꯤ ꯖꯤ ꯔꯥꯝꯖꯤꯅ ꯖꯣꯕ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯁꯨꯃꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯍꯥꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯦꯠ ꯕꯤꯕꯥꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯔꯥꯏꯖꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯄꯥꯟꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦ ꯑꯥꯏ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠ ꯒꯔꯦꯟꯇꯤ ꯐꯣꯔ ꯔꯣꯖꯒꯥꯔ ꯑꯦꯟ ꯑꯖꯤꯕꯤꯒꯥ ꯃꯤꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯃꯤꯟ ꯚꯤ ꯚꯤ ꯖꯤ ꯔꯥꯝꯖꯤ ꯑꯦꯛ 2025 ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯕꯗ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯂꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯐꯒꯠꯅꯕꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯕꯔꯥꯖ ꯁꯤꯡ ꯆꯧꯍꯥꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯟꯗ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯇꯤꯔꯨꯄꯇꯤ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯤ ꯚꯤ ꯖꯤ ꯔꯥꯝꯖꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯅ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯃꯥꯡ ꯍꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 1,45,000,000,000 ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯥꯏꯖꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 150,52,000,000,000 ꯈꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯦ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯐꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯍꯟꯕꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕꯗ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯌꯥꯍꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯗꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯆꯧꯍꯥꯟ ꯍꯥꯏ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯃꯉꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 1,07,000,000,000 ꯆꯥꯗꯤꯡ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ
10: सभी ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ग्रामीण विकास मंत्रियों को कहना चाहता हूं चुने हुए प्रतिनिधियों को कहना चाहता हूं जनता जनार्दन मजदूर भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं इस पैसे का सही उपयोग करके विकसित भारत के लिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत एक गौरवशाली भारत एक संपन्न भारत एक समृद्ध भारत एक आत्मनिर्भर भारत और एक विकसित भारत का निर्माण हो रहा है विकसित भारत के लिए विकसित गांव बनाइए विकसित भारत जी राम जी योजना में
9: ꯃꯨꯈ꯭ꯌꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯧꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠ ꯒꯦꯔꯦꯟꯇꯤ ꯔꯣꯖꯒꯥꯔ ꯑꯦꯟ ꯑꯖꯤꯕꯤꯒꯥ ꯃꯤꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯃꯤꯟ ꯕꯤ ꯕꯤ ꯖꯤ ꯔꯥꯝꯖꯤꯅ ꯖꯣꯕ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 125ꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯖꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯔ ꯏ ꯖꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯗꯤ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 100ꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅꯤ ꯔꯥꯏꯖꯒꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯔꯥꯖ ꯕꯤꯚꯥꯒꯅ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯁꯂꯥꯝ ꯊꯔꯣꯏꯖꯝ ꯏꯀꯣ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯄꯥꯔꯛꯇ ꯔꯥꯏꯖ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠ ꯒꯦꯔꯦꯟꯇꯤ ꯔꯣꯖꯒꯥꯔ ꯑꯦꯟ ꯑꯖꯤꯕꯤꯒꯥ ꯃꯤꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯃꯤꯟ ꯕꯤ ꯕꯤ ꯖꯤ ꯔꯥꯝꯖꯤ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯚꯤ ꯚꯤ ꯖꯤ ꯔꯥꯝꯖꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨꯃꯟ ꯂꯨꯄꯥ 140,000,000,000ꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 100,000,000 ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯚꯤ ꯚꯤ ꯖꯤ ꯔꯥꯝꯖꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠꯄꯨ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2023 ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯪꯐꯥꯎꯅꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯀꯦꯝ ꯆꯥꯟꯅ

0: कर्नाटक, जम्मू काश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरला, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश की मफम क्या लागली बथांग नुमित फाव अकनब नों चुगनी खा नोंसुप्ती हौरप कूंगी नों लेबा की कोनों दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब अमसुंग राजस्थान की मफम खरदले। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंफाल सेंटर की पाव मतुगिना तमेंगलोंग, सेनापति, उखरुल, कामजोंग, जिरीबाम, चांडेल, चुराचांपुर, फेजोल अमसुंग नोने की मफम क्या अखाक अराव यावना नोंग चुगनी। हयेंग तमेंगलोंग, सेनापति, उखरुल, कामजोंग, जिरीबाम, फेजोल, चुराचांपुर, चांडेल अमसुंग नोने की मफम क्या नोंग चुगनी हरी। अखोई की नोने पाउमीन है नोने जिला द नों चुबदी लौमी लौ सूंगू उब की थबक खुमांग पाइप हौरे लौ लिंब की थबक था अनीसुब चेर फाव चथरब याय जिला लौमी नों चुरक्तना लौ सूंग की थबक निंथीना पाइपद हराव फोंदोक्नरी। इंफाल जिरीबाम लंबी नेशनल हाईवे 37 की भीम का हेन सोचिब माल पुब गाड़ी मसिंग यामना चटपना ड्राइवर सिंह लंबी तोयना यादव की अचोब अवाब मायुक्नरी। ऑल जिरीबाम रोड ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइवर्स यूनियन की प्रेसिडेंट एस प्रताप नंगसी पाउमी सिंह दाई लंबी असिद मरम चादना सेंखाई यामना लौबनसु ड्राइवर सिंह हेन अवाब मायुक्नरे। पथ पुमथगनब पोलम सिंह पुब गाड़ी सिंह मतम सांगना लंबी पलहन बिदनब महांगना अपील तौरी। नियोंग की वांगमद लंबी आइन कायना साजिनब गेट सिंह लौथोपिनब महांगना सरकार की पुनिंग चिंसिलकले।
1: नेशनल हाईवे 37 लंबी असिद हजेजिक ओइब सिचुएशन असे असुकेमति फत्रे जिरीबाम असे साबन मरम ओरगा पोचे कुमथरकप ड्राइवर सिग्नल चनबगी दमक मसाजी सीरियल गायबद अवाना थेंगनादिब असिसु इरियन असिना मायोग जादुना लक्चरी। लंबी असिद इलीगल ओइब गेट केया थेंगनादुना ड्राइवर सिंह नम आदना सेन खाब हरासमेंट पीबू कौटोना ड्राइवर सिंह की हाइज।
0: बैंक ऑफ बड़ोदा लेसांगथेम ब्रांच हौनबीना राज्य सरकार की स्पेशल सेक्रेटरी होम अहंथेम सुभाष सिंह हौदोक्रे। बैंक ऑफ बड़ोदा लेसांगथेम ब्रांच हांगदोप की थोरम श्री सुभाष है केंद्र सरकार लेबाम तोान तोान स्कीम क्या की कानब पीरबू मना नक्पद बैंक लेटबना खुदचाद क्या मायनोरी। मांग है फेजोल जिला बैंक फाव लेरमे हंक की बैंक ब्रांच हांगदोक्रे। CMHT and PMJAY की मतंग IDP सिंह निंथीना खाब पांदम नोम की अवेयरनेस प्रोग्राम काचिंग जिला की यांगबी कम्युनिटी हॉल पांथोक्रे। खुंजा सिंह यौन मई चनी यांखई रोम सरुक याखिब थोरम अखंग ऐसी करंब मोयना CMHT PMJAY पाइब यागदगी हैब की मतंग वा गांखे। मणिपुर पुलिस ने हाई राज्य मियाम पीरब इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर सिंह मियाम पाव फाउन याब नंबर इमरजेंसी रेस्पोंस सपोर्ट सिस्टम ERSS 112 हेन मपांगल कंखटल्ले। सुप्रीम कोर्ट की पौतना फायर एंड इमरजेंसी सर्विस NISM रिफरल ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस सर्विस वीमेन हेल्पलाइन चाइल्ड हेल्पलाइन स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट SOS मरी लेनबीदम मियामना 112 डायल तौदना पाव फाउदो फाउजिन यागनी हैरी। इंफाल ईस्ट की वाइटोन मनिंग लेकाई नौन साब मालेम सेंबी विलेज लेवल फेडरेशन की ऑफिस खुंद्राफम केंद्र की MLA TH लोकेश्वर सिंह संगाख्रे। संगाब की थोरम वाइटोन ग्राम पंचायत की चेयरपर्सन पुख्रम्बम सुरबला विलेज लेवल फेडरेशन की प्रेसिडेंट वहेंगबम मानबी सरुक याकी। पाव की मरक्तना ब्रेक अमामु
2: Department of Information and Technology na miyam gi damak kuzarakli e-seba Manipur
3: certificate tantukpagi document lokthukpagi employment exchange ki servicing pum namak online da apply tobiyargani
2: meri pehchan oina aadhar authentication tauraga raibamong da login tobiyo adomgi maru eba document sing digilocker integration tauduna secure oina digitally season abasu yare
3: central limited state ki lairiba government servicing umang integration gi matengna irai line access tobusu yargani
2: adomna hangningba wahang singi damak ai chatbot support su hapchari masida natana whatsapp governance ki khuthangda adomgi phone da notification update lakhan basu yare
3: aduna season abiu government ki service singbu miyam da hena naksil halliba
2: e seva manipur
0: आकाशवाणी इंफाल की पाव ताबीरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी भारत जापान की मरी असी तसेंगना अखन्नब मरी अमनी सेमिलोन की लमद मपांग ओइब असिसु मरी असी की मयेक लारब खुदम अमनी। नई दिल्ली द इंडिया जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम द वांगांगब द श्री मोदी ने हाई जापान की हैथोय सिंथोयब सेल थादब असिगा भारत की पाक चावना थबक यांखलगलिब असिगा पुंछिन नरबदी मालेम द कानब कया फंगनी। ꯃꯥꯡꯅꯥꯏ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯅ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯅꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯄꯥꯟꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ, ꯑꯦ.ꯑꯥꯏ, ꯉꯥꯛꯁꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁꯦꯟꯕ ꯆꯍꯤꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯖꯤ.ꯗꯤ.ꯄꯤ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯗ ꯇꯔꯦꯠ.ꯇꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯅꯥꯏ ꯇꯀꯥꯏꯆꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯅꯕꯗ ꯌꯥꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯥꯡꯅꯥꯏ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯖꯤ ꯁꯚꯦꯟ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯪꯈꯠꯅꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯏꯅꯔꯖꯤꯒꯤ ꯂꯂꯣꯜ ꯏꯇꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯠꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯇꯥꯞꯁꯤꯡ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯉꯥꯡꯕꯝ ꯑꯃꯨꯈꯣꯝꯕꯗꯒꯤ
4: FIFA World Cup 2023 ꯀꯤ ꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡꯈꯥꯏ ꯆꯠꯄꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯒ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯥꯒ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 4:30ꯗꯅ ꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯜꯒ ꯀ꯭ꯔꯣꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 8:30ꯗꯅ ꯁ꯭ꯋꯤꯠꯖꯔꯂꯦꯟꯒ ꯑꯜꯖꯦꯔꯤꯌꯥꯒ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯦꯠꯁ ꯑꯃꯗ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯅ ꯕꯣꯁꯅꯤꯌꯥ ꯑꯦꯟ ꯍꯔꯖꯤꯒꯣꯚꯤꯅꯥꯕꯨ ꯄꯥꯟꯖꯤꯜ 2-0ꯗ ꯊꯣꯏꯈꯤ꯫ NGL ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯇꯔꯦꯠꯁꯨꯕ ꯂꯝꯕꯥ ꯃꯌꯨꯝ ꯅꯣꯡꯊꯣꯟ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯦꯠꯁꯇ ꯍꯥꯎꯈꯥ ꯑꯦꯐ.ꯁꯤꯅ ꯁꯥꯏꯗꯥ ꯑꯦꯐ.ꯁꯤ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯥꯎꯕꯨ ꯄꯥꯟꯖꯤꯜ 4-1ꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯃꯤꯁ ꯑꯦꯐ.ꯁꯤꯅ ꯑꯦꯐ.ꯁꯤ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡꯅ NGL ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝꯕꯨ ꯄꯥꯟꯖꯤꯜ 4-1ꯗ ꯊꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕ MNCA ꯋꯨꯃꯦꯟꯁ ꯑꯟꯗꯔ 19-T20 ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤ 2023ꯀꯤ ꯉꯁꯤ ꯈꯨꯗꯩꯕ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯇꯥꯎꯊꯣꯡꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯦꯠꯁꯇ ꯐꯣꯔꯁ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯥꯎꯅ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗꯄꯨ ꯔꯟ 100 ꯊꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯊꯥꯎ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯦꯠꯁ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯕꯗꯒꯤ MPA ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯗꯣ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯄꯣꯏꯟ ꯌꯦꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯔꯤꯡ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯁꯪꯒꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯔꯥꯖꯦꯁ
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯃꯨꯈꯣꯝꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯕꯔꯥꯖ ꯁꯤꯡ ꯆꯧꯍꯥꯟꯅ ꯑꯟꯗ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯇꯤꯔꯨꯄꯇꯤ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯤ.ꯖꯤ.ꯔꯥꯝꯖꯤ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯚꯤ.ꯖꯤ.ꯔꯥꯝꯖꯤꯅ ꯖꯣꯕ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯠꯁꯨꯃꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯍꯥꯔꯁꯤꯅꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯔꯥꯏꯖ꯭ꯌꯥꯕ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯦꯠ ꯕꯤꯚꯥꯒꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯔꯥꯏꯖ꯭ꯌꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯄꯥꯟꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ, ꯑꯦ.ꯑꯥꯏ, ꯉꯥꯛꯁꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫
5: ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯨꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯈꯟꯒꯠꯆꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯍꯥꯃꯣꯝ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗꯅ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯁꯛꯄ, ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯀꯤꯁꯣꯔ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯖꯤ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯩꯕꯥꯟꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯅꯤ꯫ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

0: ꯄꯥꯕꯨꯡ, ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯄꯥꯗ ꯊꯧꯒꯜꯂꯣꯟ ꯀꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯗꯕꯅ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯏꯊꯧ ꯇꯧꯕꯗ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯁꯅꯥ ꯌꯥꯊꯪ ꯇꯥꯖꯔꯤ꯫
1: ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅ ꯊꯧ, ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯔꯤꯅ ꯊꯧ?
0: ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥ ꯌꯥꯊꯪ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯕꯨꯡꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯊꯧꯅꯤ꯫
1: ꯑꯩꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥ ꯌꯥꯊꯪ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪꯅ?
0: ꯃꯩꯗꯤꯡꯉꯣ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯆꯤꯠꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯅꯥ ꯌꯥꯊꯪꯅꯤ꯫
1: ꯃꯤꯅꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥ, ꯑꯣꯛꯇꯕꯤ ꯃꯆꯥꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯈꯨꯕꯝ ꯃꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯦꯔꯥ? ꯆꯠꯂꯨ, ꯅꯌꯥꯃꯨꯡ ꯁꯝꯖꯥꯏꯕ ꯀꯧꯔꯨ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯧ꯫
0: ꯄꯥꯕꯨꯡ, ꯅꯆꯥꯗ ꯄꯨꯉꯝꯗꯕ ꯏꯔꯥꯟ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯅꯨ꯫ ꯏꯊꯧ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯨꯕꯩ ꯑꯃ ꯅꯥꯊꯣꯛꯅ ꯁꯅꯥ ꯌꯥꯊꯪ ꯏꯟꯕ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯦ꯫
1: ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯤꯟꯊꯛꯇ ꯅꯪꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯃꯥꯡꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ?
0: ꯅꯆꯥꯒꯤ ꯂꯦꯡꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯊꯧꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯕ ꯏꯄꯥꯈꯪꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯄꯨ ꯃꯔꯥ ꯇꯞꯅ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯋꯥꯏꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒ ꯈꯥꯏꯅꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯈꯨꯠꯇ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯊꯥꯡꯅ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯄꯣꯊꯥꯕꯤꯌꯨ, ꯅꯆꯥ ꯊꯧꯒꯜ ꯐꯪꯖꯒꯦ꯫
1: ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯃ ꯁꯝꯖꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯊꯨꯅ ꯀꯔꯣ ꯇꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ? ꯀꯅꯣ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯅꯔꯛꯇ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯧ, ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯀꯌꯥ ꯈꯣꯡꯅꯦꯠꯅꯗꯨꯅ ꯊꯥꯡꯀꯣꯛꯇꯅ ꯑꯋꯥꯒꯤ ꯀꯣꯡ ꯃꯇꯣꯜ ꯐꯨꯔꯥꯕꯨ ꯌꯥꯟꯊꯤꯛꯂꯕ ꯒꯔꯤꯕꯅꯤ ꯋꯥ ꯁꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯤꯡꯂꯤ꯫ ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯨꯝꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯅꯨ, ꯑꯋꯥ ꯇꯈꯦꯜꯗꯒꯤ ꯈꯣꯝꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯌꯥꯒ ꯃꯤꯅ ꯈꯣꯝꯖꯔꯨꯀꯣ, ꯊꯪꯍꯥꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗ ꯂꯧꯁꯟꯒꯦ ꯀꯥꯏꯗꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯁꯛꯁꯨ ꯉꯣꯝꯈꯤꯕꯗꯤ ꯉꯥꯡꯈꯔꯦ, ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯋꯥ ꯃꯇꯝ ꯉꯥꯡꯂꯛꯄꯗ ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯆꯥꯕꯨ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯅꯪꯕꯨ ꯀꯅꯥꯗ ꯊꯤꯡꯕꯤꯔꯒꯅꯤ?
0: ꯄꯥꯕꯨꯡ, ꯏꯄꯥ ꯏꯃꯥ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯒꯤ ꯇꯠꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯤ ꯌꯦꯡꯅꯕꯅ ꯅꯤꯡꯂꯕꯁꯨ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ,
1: ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯦꯡꯗꯅ ꯅꯪꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯏꯟꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
0: ꯅꯆꯥ ꯁꯅꯥ ꯌꯥꯊꯪꯗꯨ ꯏꯟꯖꯕ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ꯫
1: ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ? ꯂꯝ ꯍꯦꯟꯕ ꯄꯦꯠꯇꯋꯥ ꯅꯨꯡꯁꯨꯛꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯨꯅ ꯈꯨꯠꯁꯥ ꯄꯣꯔꯛ ꯄꯣꯔꯛ ꯊꯦꯛꯅ ꯈꯥꯡꯕ, ꯀꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯈꯨꯌꯥꯒꯤ ꯎꯐꯨꯜ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯇꯣꯡꯗꯅ ꯃꯤꯠꯇ ꯆꯪꯒꯦ ꯊꯧꯔꯥꯡꯂꯤ꯫ ꯐꯩ, ꯅꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯒꯔꯤꯕ ꯔꯤꯋꯥꯁ ꯏꯒꯨꯟ ꯈꯪꯍꯟꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯊꯥꯡꯕ꯫
2: ꯄꯥꯕꯨꯡ
1: ꯁꯣꯝꯖꯥꯏ,
2: ꯅꯆꯥꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ, ꯋꯥꯔꯛꯄꯤꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯨ ꯅꯆꯥ ꯂꯩꯖꯔꯤ, ꯁꯅꯥ ꯌꯥꯊꯪ ꯇꯥꯛꯄꯤꯁꯤ, ꯑꯣꯛꯇꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯅꯥ ꯇꯣꯝꯕꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯅꯠꯇꯦꯗꯣ ꯅꯅꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯥꯜ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯅꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ꯫
1: ꯁꯅꯥ ꯍꯜ
2: ꯄꯥꯕꯨꯡ,
1: ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯄꯟꯕ ꯄꯤꯔꯒꯅꯣ ꯏꯄꯥꯒꯤꯕꯣ?
2: ꯄꯥꯕꯨꯡ
1: ꯆꯠꯂꯨ, ꯆꯤꯠ ꯁꯥꯏꯕ ꯃꯁꯝ ꯃꯈꯨꯗꯥꯡ ꯌꯦꯠꯇꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯡꯗ ꯆꯤꯡꯂꯛꯎ, ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯒꯦ꯫
2: ꯄꯥꯕꯨꯡ, ꯄꯥꯕꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯊꯃꯣꯏꯗꯇ ꯏꯆꯥꯅꯤ ꯈꯟꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ, ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯏꯅꯥꯎꯅꯤ ꯑꯩꯅ, ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯏꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯄꯨꯅꯤꯡꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯄꯨꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯝꯆꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯆꯣꯏꯔꯣꯜ ꯅꯠꯆꯗꯦ, ꯆꯤꯟꯇꯅ ꯉꯥꯡꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯗꯕꯁꯨ ꯅꯠꯆꯗꯦ,
1: ꯁꯝꯖꯥꯏ
2: ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯔꯥ ꯇꯞꯅ ꯏꯪꯅ ꯄꯥꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯝꯆꯥꯏꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯁꯅꯥ ꯇꯥꯡꯕꯜ ꯃꯤꯍꯧꯗꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯀꯅꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯤꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕ?
1: ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯁꯝꯖꯥꯏ,
2: ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯃꯁꯥꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯆꯠꯄ ꯎꯕꯗ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯏꯖꯥꯇꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯝꯆꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯁꯨ ꯆꯦꯠꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯅ ꯄꯣꯊꯥꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯑꯄꯣꯛꯄ?
1: ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯝꯖꯥꯏ? ꯅꯪꯁꯨ ꯏꯗꯣꯝ ꯅꯥꯝꯃ ꯇꯥꯔꯕ ꯆꯤꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯕ ꯅꯤꯋꯥꯁꯀꯤ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ?
2: ꯄꯥꯕꯨꯡ,
1: ꯃꯤꯅ ꯐꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯆꯥ ꯅꯤꯄꯥ ꯁꯥꯏ ꯇꯔꯥ ꯅꯤꯄꯥꯅ ꯒꯔꯤꯕ ꯅꯤꯋꯥꯁꯀꯤ ꯁꯥꯒꯩꯗ ꯈꯨꯠꯀꯜꯂꯦ ꯄꯥꯡꯒꯜꯂꯦ ꯈꯟꯖꯔꯝꯕ, ꯍꯦꯛꯅ ꯀꯂꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯥꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯇꯣꯞꯄ ꯇꯥꯔꯕ꯭ꯔꯕ?
2: ꯅꯠꯇꯦ,
1: ꯂꯥꯏꯅ ꯁꯣꯏꯈꯤꯗ ꯀꯠꯇꯗ ꯃꯥꯡꯂꯦꯗꯣ, ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯆꯥꯔꯥ ꯏꯈꯨꯠꯅ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯦꯗꯣ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯁꯥꯝ!
2: ꯄꯥꯕꯨꯡ,
1: ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯕꯨꯡꯉꯣ, ꯏꯄꯥꯅ ꯅꯤꯡꯖꯕꯒꯨꯝꯕ ꯅꯈꯨꯠꯇ ꯁꯤꯟꯅꯔꯝꯂꯒ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯂꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯝꯕ,
3: chana dum loi bi pan chan na khiduna ahal lore ba garib ni was ai mang jabat natra mara ta ne ing na pan jaram ba nong si jaram ba pok na pham lam dam makong maru pa da i gi lok nong oi ra ni doi pa gi sham jai
2: nate
3: ma pa oi ba gi sha ira go wael thori ta na pun nu na ma cha sing na ma to oi ba sha pula lai jaram ba maning makha tam na mahi mahi asaurum karing mana luching na bokon na bada ige lo khom chel lagara ba pogi rai lamdam
2: pabo na cha na khurum jari ni pabo
3: o lairin maiding hun lining tho shana khonglen chan birakshi
2: pabo na cha bungak pi shana ya thangpum ba phigau shana ya jari ba na cha ni ne pabo
3: गरीब निवास न कलक येंग थी येंग दा इशा की शाग दब शरूप लोई न मिंगों न पीजब गम लबा महोग शाग की थमो लेंग दन लेरी ने पागे बुंगो ताऊ से चाय
2: पाबो
3: न शाग की अफबा ओई न नवत नत्तना नंगी पुंग फम लम दम बु येंग दना नहा हल फम फम परिंग सिंगन न पाल लग दब पुंग नहाक थक्षिदी थोक तरबन सामग सिंजाको नख्वांग यालिब मिरोल खंगक पदगि तमलक लब महै पुमिन नवन सिन्नराउ नपा न सागे मफम द सिजिन नदुर पोंग न फम लमदम अनांग ब ईगि फिरो न लैतें कुंगन कोइ पागे मो हरोई बदा हरोई बदा इ पागे पुन सीद इशागे निंग बथुंग मनावा हैना इपावो मुक्त पेलल्लु ने पागे बुंगो
4: लाइनिंग थो
3: वोमति
4: मसा ओइबना मपा ओइबगी थंगत पंगा मरोय दबा लूर बया थंग थोरिना पुंदुना लाइखा तान सिंगिंग सिंगिंग बा माकाई द पुमिरकनो इसा द नतना मपा मसा न मिमांग द माइ उंगम दना अवा बद पुंसी लोंबा लेलनी ने लाइनिंग थो
1: तार बा शाम जाय
2: पाबु
3: इपाबु इन न वाई संग न लेन ब छिन मंगम लरोय दन ने इपा गे बुमो
2: इमासी न सा थगल फंग जगे ने हक तं लेन थोक पी गद रई मासी
4: मतिक साबा इसाने सिचाय
2: इमासी
4: इमाबु निंग ब थुंग न लेहन ब छिन बंगम लरोय दन ने इमा गे बुमो
2: नचाद मतम पिबियोनी मा
4: करी
2: मा
4: करी है बा गोमती न सांग नव मतम मसद नुंगाय फब इपक त ताव दुन लेनिंग इ कंज ब साब रहे
2: मासी नसाद ताक पियो नसान पंग थोक पंगम गदब ओइ रबदि हौजिक मक पंग थोक जगे इ मासी इचिल इनाव हि नुंग सिनब मरी थादत के थौरांग बिनु ने इ मासी
4: मतिक साब इसान इसानो वांगा बसे याम न पांग खेदा
2: इमासी
1: इपागे बुमो इपागे शाम जाए
2: पाबु
1: अतो पकादा चल शिला जिच्छाए
2: पाबु
1: आयो नंग न करी पांबा इपागे का पांब रहायो इपागे बुमो
2: यामो बिंदी रबरा करी वाट पीरी शिदगी हेंदो ननावी करी वाट पीरी के यामो इमासी सोहाई द सुम पेन बिरो मखाता ने येंग थबिरन लेंग बिरो इमासी लेंग बिरो
4: करे ताऊ सनाहन
2: इमासी
4: ननागी वासपल लाइनिंग तो मनीपु सना ले बाप वांग मलाना सना कोंगेन की बाप
2: करे
4: सना थोगन न समझाए न वासपल नत्ते ले बाप अमगी निंग तो सना या थंग ले बाप ताब या दबाप वाने
2: पाबू नसागी सिंधा ताक पीरो पाबों
4: करे बा
1: इपागी बुंगो
2: पाबों
1: ननाओ शिंगा निंबा तुम या पुरस
2: पाबों
1: इपागलो इन्हें नहीं शादी मणिपुर वांग मलाने चक्कर चीने इपागी समझाए
2: सनाया थंग पिगाओ शान याजरी इमासी नसा नजा चच्चर गई मासी नजा नजा कुरुम जरी मासी नजा
4: इमागी तोंबा
2: शनाया थम
4: ननाई सिंगलोई ना ना पाबो मासुंग यांबुंगी थोगन खाई देना बा 미쿱 아마다 반타하마 야디
5: 이마에베 마 나 자부수 땀티레베이 타워시대기 라브나 탐미로네 이마
4: 까리! 까리 해봐! 나마에게라만 생겨닝가바디 나 토아이 빠모다나 나만 콤바 닝한 나가다발라이라바디 타가세 빠유 마긴 세상 아보빈 나마긴

0: लम्गी खोइ मुलाई पाम्ब न सम्झी रै तम न पाइ रखलनी। लम्गी खोइ मुलाई पाम्ब न सम्झी रै तम न पाइ रखलनी। पाङ देम जगोइ सारिए चरै फिजिन फेलिए। पन्थौ माङ्गोन खेन्जोङ चरायुम खमाङ दथा। सम्लाङ कोइ ककनरि बिनु जा यत्न हुन ओइन ओ ओइन हुन यत्न ओ। पाङ देम जगोइ सारिए चरै फिजिन फेलिए। पन्थौ माङ्गोन खेन्जोङ लाङ।
1: ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯏꯁꯩꯗꯨꯕꯛꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯇꯥꯖꯔꯨꯔꯦ
2: ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯃꯛ ꯈꯔ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ

0: लग्नारुगें असीदी लग्नारुगें असीदी लग्नारुगें असीदी हो लग्नारुगें असीदी
1: ताबियु नुगाइबियु ताबिरे अदोम थोरम ताबिरी बा से आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चैनल दगिने चैनल असीदा हुजे मु पुदुन लाक्सरी अदोमना पोस्टकार अमदि एसएमएस की खुथांगदा ताबिनिंगदुना खनबिखिबा मणिपुरी फिल्मी सेगी खुदोम

आकाशवाणी के चैनल एफएम गोल्ड को सुन रहे हैं आप 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। आज मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमसफर शमीम खान, और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हर सिंगार, जहां हर बात में मोहब्बत की खुशबू होगी, हर एहसास में दिल की धड़कन होगी और हर लफ्ज में होगा मौसम का जादू। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि मोहब्बत का मौसम जब दिल में उतर जाए तो हर हवा गजल लगती है, हर कहानी शाम बन जाती है और हर सुबह किसी की मुस्कान जैसी लगती है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के पहले गीत के साथ, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने और फिल्म है पाकीज़ा।

मोहब्बत और मौसम दोनों का रिश्ता बड़ा पुराना है। बारिश हो तो किसी का हाथ पकड़ लेने का मन करता है, सर्दियां हो तो किसी की याद गर्म चाय जैसी लगती है, और बसंत वो तो जैसे दिल में नए फूल खिला देता है। इसीलिए शायद किसी शायर ने कहा है कि हवा में कुछ तो बात है जो तेरी याद साथ है, ये मौसम यूं ही हसीन नहीं, शायद इसमें तेरे इश्क की बरसात है। दोस्तों, कभी कभी मौसम बदलता नहीं बल्कि किसी की मौजूदगी ही पूरे मौसम को बदल देती है।

दोस्तों, हर मोहब्बत का सबसे खूबसूरत लम्हा क्या होता है? वो होता है जब कोई पहली बार अपने दिल की बात कहता है किसी के लिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। कहना आसान होता है तो किसी के लिए सालों लग जाते हैं सिर्फ इतना कहने में कि मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। दोस्तों, मोहब्बत का इजहार बड़े बड़े शब्दों से नहीं होता। कभी एक मुस्कान, कभी एक खामोशी और कभी सिर्फ आंखों से भी मोहब्बत की पूरी दास्तान कह दी जाती है।

बारिश और मोहब्बत दोनों जब साथ आते हैं तो दिल खुद ब खुद मुस्कुरा उठता है। भीगी सड़कें, खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदें और साथ में हो चाय का गर्म प्याला, और इन सब के बीच अगर किसी की याद आ जाए तो ये समझ लीजिए कि दिल सचमुच मोहब्बत में है। बारिश की हर बूंद में तेरा नाम सुनाई देता है। ये मौसम भी जाने क्यों हर बार तुझ तक ले जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, अगर आज की शाम आप किसी को याद करके मुस्कुरा दिए हों, अगर किसी पुराने एहसास ने आपके दिल पर फिर से दस्तक दी हो, या फिर आपने मन ही मन किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया हो, तो समझिए हमारा ये कार्यक्रम सफल रहा। तरसे चलते चलते एक छोटी सी बात, मोहब्बत कभी आवाज नहीं करती, बस दिल में चुपचाप अपना घर बना लेती है। जिसे सच्चा प्यार मिल जाए, उसे जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत मिल जाती है। दोस्तों, कार्यक्रम के अगले गीत के साथ मैं आपका दोस्त शमीम आपसे इजाजत चाहता हूं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की

0: दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
0: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, "When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits." He said, "Both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound." The Prime Minister said, "India and Japan today reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless."
0: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर

0: And before we begin the program, an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, आइए अब रुख करते हैं और जानते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज 0.7% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 579 अंक बढ़कर 77,502 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 170 अंकों की बढ़त के साथ 24,176 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में 0.5% और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। इससे पहले बाजार सकारात्मक रुख के साथ खुले और लगातार दूसरे दिन भी इनमें बढ़त रही। कच्चे तेल की कीमतों में कमी और सकारात्मक भू राजनीतिक रुझानों के कारण निवेशकों का आत्मविश्वास बना रहा।
0: Benchmark domestic equity indices ended over 0.7% higher today. The Sensex rose 579 points to close at 77,502. The Nifty gained 170 points to settle at 24,176. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index added 0.5% and the Small-Cap 100 index climbed more than 1.2%. Earlier markets opened on a positive note and extended their upward momentum for the second consecutive session. Investor sentiment remained upbeat, supported by softer crude oil prices and positive geopolitical developments.
1: Sensex में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इंफोसिस 5.5% से अधिक, वहीं टेक महिंद्रा और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में लगभग 4.5% का उछाल आया। उधर खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में लार्सन एंड टूब्रो 0.8%, मारुति में लगभग 0.5% और एक्सिस बैंक में 0.3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।
0: In the sectoral indices on the BSE, 20 out of 25 sectors ended in positive zone. Among the key gainers, IT climbed almost 4.4%, focused IT rose 4.3% and consumer durables as well as realty added over 1.4%. In contrast, capital goods fell over 0.7%, telecommunications slipped nearly 0.7% and power lost over 0.6%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,536 companies advanced, shares of 1,740 companies declined and shares of 182 companies remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 15 पैसे कमजोर होकर 95.39 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। उद्यन, अगर हम आज के ट्रेजेक्ट्री की बात करें कि आज किस तरीके से मार्केट ने प्रदर्शन किया और क्या प्रमुख कारक रहे जिस वजह से मार्केट का ये रुझान हमें देखने को मिला, तो आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, ये मतलब सारी जो बातें हैं एक चीज के साथ हम आराम से जोड़ सकते हैं, वो ये है कि तेल से जुड़े हुए सुर्खियां क्या रही, हेडलाइंस क्या रही, वो सब पॉजिटिव रही हैं कि जैसे अपने
1: दाम घट गए,
2: कुछ प्रोग्रेस इनडायरेक्ट टॉक्स में के रिपोर्ट्स आए।

0: कतर के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा और कुछ रिपोर्ट्स आई, कुछ सुपर टैंकर्स जो हैं सऊदी अरब का तेल तकरीबन 2 मिलियन बैरल्स के आसपास वर्थ ऑफ ऑयल वहां से निकला है। ये बहुत बड़ा बड़ी तादाद है जो हमारे यहाँ तो नहीं आ रही, ये चीन जा रही है और कुछ और देशों में जा रही है, पर ये एक फ्लो ऑफ गुड पॉजिटिव हेडलाइंस, मतलब बैड न्यूज नहीं आ रहा है। और उसका इमीडिएट इम्पैक्ट सबसे पहले करेंसी मार्केट, करेंसी मार्केट से एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन, वो सारा एक डोमिनो इफेक्ट पॉजिटिव, इसको वर्चुअस साइकिल बोलते हैं, वो उस तरीके से घूमता है। और आप देखेंगे कि हर जगह में कुछ लोग ये कह सकते हैं कि देखिए हम रुपए के वैल्यू में वो बात नजर नहीं आ रही, पर आरबीआई ओवरऑल एक मैनेजमेंट कर रही है जिसमें वो फॉरेक्स रिजर्व्स, आपका करेंसी में मूवमेंट ज्यादा ना हो उसके बारे में, तो वहां पे उसकी बात को थोड़ी देर के लिए हम अलग रखना पड़ेगा। पर इसके अलावा जो है बाकी जो चीजें हैं आप सब जगह में एक इससे रिकूपिंग जो स्लाइड हुआ था वो ऐसा लग रहा है कि वापस आ रहा है।
1: Udayan, let's talk about specific sectors. We've seen a rally today in the IT sector. It's a very interesting trend that we've been seeing in the IT sector. You know, if you look at it overall, in the last 20 trading sessions, it tanked 17%. In the last 4 trading sessions, it was down 7%. But today, I talk about Nifty in IT index, there is a rally of 4.64%. What's driving this rally in the IT sector? Because that's one of the major reasons we have seen the Sensex and the Nifty, you know, ending in green.
0: So, you're so right. And a lot of these IT stocks, by the way, are large caps. And, you know, their capitalizations are large.
1: Yes.
0: And there's this whole theory going in, and I buy into that theory. Not theory. Experts are saying that a lot of the exodus of money that has happened is FPI money has been, they were invested in large caps. Whereas the domestic institutions went in and bought mid cap and small cap. So, two different sectors of the market have got affected. So, so at some point, you know, when you keep buying, rather selling, it happens with buying also. You suddenly realize, oh, you know, maybe we have done enough. Maybe we need to do the different thing. The other very interesting thing that has happened today is maybe it happened yesterday, but it came to my notice today, is two very prominent brokerages, or shall we say research firms.
1: Okay.
0: Maybe brokerages would be a rather appropriate word. They have come out with notes where they are saying that it's not so bad, you know. Hey, it's not so bad after all. It's good, you know. They're going to bounce back. So, what I'm trying to hint,
1: it has affected the sentiments.
0: Yeah, you know, subtly that sometimes, you know, the disclaimer that you gave right in the beginning of the program. So every investor needs to think through this little bit of critical thinking. That collective wisdom, yes, it's important.
1: Yes,
0: but sometimes that wisdom has to work for you. If it doesn't make sense to you, maybe you should be thinking harder. So basically what I'm trying to say is that it is, now they've decided that, it's IT, Indian IT deserves love, and that's why it's getting it.
2: Right. Udayan, ye to hamare IT sector ki baat rahi, lekin hum agar FIIs ki nikasi pe ek bar gaur kare, to humne agar pichle satr ko agar hum dekhe, to usme bhi comparatively jo hai wo kam nikasi hui hai, aur constantly jo DIIs hai wo to support kar hi rahe hain, to kahin na kahin ये भी एक मोमेंटम बांधता है मार्केट्स को अप करने के लिए।
0: देखिए इसमें एक और थीम भी आ जाती है, जब कभी सबने तब भी कहा था और अब भी ये बात है कि जब भी उनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लगेगा कि नहीं नहीं ये जो एआई सो कॉल्ड एआई थीम है, जहां पे फाउंडेशनल जो काम हो रहा है, चिप्स बन रहे हैं, मॉडल्स बन रहे हैं, उनके ऊपर जो इतना पैसा लग रहा है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह में, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, जौन से ऐसे दिन होंगे जहां पे लोगों को नर्वसनेस लगेगी, तब भारतीय मार्केट्स में उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये वही वाली बात है, किस दिन, विच साइड ऑफ द बेड यू आर गेटिंग ऑफ, कैसे आप سو کے اٹھے, کون سے بستر کے کون سے سائڈ سے اٹھے, اس حساب سے آپ کا موڈ آپ کا بن رہا ہے. تو اس لیے جو ہے بھارت کے جو نویشک ہیں ان کا جو رول ہے, کئی لوگ اس کو بہت سینکلی دیکھتے ہیں. یہ تو مطلب عجیب لگتا ہے میرے جیسے لوگوں کو, پر وہ ایک اسٹیبلٹی انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے اور ان کا جو یوگدان ہے وہ زبردست ہے. سو دس از کی ڈومیسٹک جو پارٹیسپیشن آپ اور ہم جیسے لوگ اور اس پروگرام کو سننے والے لوگ جو بھارت کی پرگتی میں ایک حصہ داری لے رہے ہیں,
2: جی
0: وہ ایک بہت زبردست کہانی ہے جس کے بارے میں اتنی بات ابھی تک نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے, ہو رہی ہے. بٹ دس از اے ٹریمینڈس اسٹوری وچ پروبیبلی نیڈس مور پلے دین اٹس گیٹنگ.
1: Then would you say that, you know, we, India and Japan, the Japanese Prime Minister is, of course, in India on a 3-day visit, and a slew of agreements were, signed, and there were memorandum of cooperations today that were agreed upon. So would you say that, and Japan has also announced $10 billion fresh investment in India across AI, defense technology and energy security. Would you say that that is also, you know, added a bit to the momentum, positive momentum in the markets, or is it a different
0: thing? I don't think people in the markets would be so...
1: Okay.
0: See, these things will play out in the future. Right. Markets typically don't look so far into the future.
1: Right.
0: They reward, if you see unencumbered cash flows coming in, they will immediately go and reward. One can always argue that AI is out in the future and so on and so forth. So sometimes it's also a FOMO, you know, fear of missing out. You know, you don't want to miss out on something which is once in a generation. So wisdom is different, but that is important, the things that you're talking about, because Japan has been doing business with us for ages now.
1: Yes.
0: And if you ask me, in my opinion, that relationship has been underdone, the bromance or whatever you want to call it, that relationship that we have, it probably has been underserved despite whatever breadth it has, and it probably is the time to make up for lost time.
1: Yeah.
0: And it's not a day too late.
1: Right. We will talk about the India-Japan, agreements a little later in the program. But right now, I think, Prachi, why don't you talk about the Asian market?
2: Bilkul, Anubha. Shrotaon, aaiye ruk karte hain Asia bazaar ki taraf. प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में आज गिरावट आई. चिप सेक्टर में गिरावट की वजह से दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 8% फिसला. जापान का निकेई 2.5%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 2% और ताइवान का ताइएक्स 0.5% से अधिक लुढ़का. वहीं सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1% से अधिक और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक लगभग 0.8% ऊपर बढ़ा. लगभग 8% हम कॉस्पी में देख रहे हैं गिरावट. महोदय, किस तरीके से आप इसे देखते हैं और ये क्यों किस तरीके से आ रहा है, आप प्लीज इसे बताएं.
0: देखिए, वो एक रन अप था जो बिल्कुल तेजी के साथ होता चला गया. और कई बार क्या होता, चिप्स आप जैसे हमारे भारतीय बाजारों में देखते हैं कि पहले एक सर्टन सेक्टर में आपको पसंद आने लगे लार्ज कैप, फिर आपने कहा कि नहीं नहीं लार्ज कैप तो ये तो बहुत महंगे हो गए, थोड़ा और नीचे चलते हैं, मिड कैप में चलते हैं. तो उस तरीके से जब आपने देखा TSMC और डच कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ जो डिजाइन करती है चिप्स, तो वो जब आपको लगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप सैमसंग और हाइनेक्स पे चले गए जो कि आपके दे आर आउटस्टैंडिंग लीडिंग मेकर्स, पर आप उस वहां पे फोकस करने लग गए. और उसके अलावा तब हेडलाइंस भी ऐसी थी, एनवीडिया ने हैंडशेक किया, तो उससे आपको सारे जो कंपनीज हैं आपस में एक दूसरे के साथ एक जबरदस्त हैंडशेक कर रहे हैं.
2: मैं यही बल्कि कहना भी चाह रही थी कि अभी यही बाजार है जो अपनी ऊंचाइयों पर भी गया और वही बाजार है जो आज हम देख रहे हैं.
0: तो जहां पर भी अगर जब आप फ्यूचर की तरफ देखते हैं, जैसे अब थोड़ी देर पहले बात होती थी, व्हेन थिंग्स आर आउट इन द फ्यूचर, इट्स अ ग्रोथ सेक्टर, आपको नहीं मालूम कि ये आप किसी को कह नहीं सकते कि आज ये आपने पिछले 3-4 महीने पहले ये बोला था, ये क्यों नहीं हुआ, ये दिस इज नॉट राइट 4 months down the line, it's probably we're talking about 3-4 years, cheeze hongi. So people are raising money right now. To usme wahan pe jab aapko headline aisa kuch aate, because ye conviction jo hai, aap ek جسے لیپ آف فیتھ کہتے ہیں نا, میرے کو معلوم نہیں یہاں پہ سرکس کتنے لوگوں نے ریئل لائف میں دیکھی ہے, تو وہاں پہ ٹریپیز آرٹسٹ ہوتے ہیں جو ہوا میں جھولتے ہیں, تو ایک آدمی چھلانگ مارتا ہے یا لیڈی چھلانگ مارتی ہیں, ان کو پکڑا جاتا ہے, دوسرے لٹک رہے ہوتے ہیں وہ پکڑتے ہیں, اس کو لیپ آف فیتھ بولا جاتا ہے. تو یہ لیپ آف

0: फेथ की तरह है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने कितना कन्विक्शन है, आपके फेथ है,
1: यानी सुर्खियां पढ़ करके आप
0: जी हाँ। आपको यह है कि आपने मैंने वो छोड़ दिया है जो मैंने पकड़ी थी और मेरा जो साथी है वो मेरे को पकड़ लेगा। वैसे तो नीचे नेट है जमीन पर दिस इज कॉल्ड द लीप ऑफ फेथ। तो लीप ऑफ फेथ जब डगमगाने लगती है या उसमें कमजोरी आ जाती है तो आप वो देख रहे हैं जो आज आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ सुर्खियां ऐसी निकली कल जिसके वजह से देयर इज दिस होल रिविजन कि नहीं मे बी वी आर जस्ट गेटिंग टू बुलिश आउट देयर। तो ये चीजें जो एडजस्टमेंट होती है, समटाइम्स यू आर मूविंग ऑन द फ्यूल्ड बाय सेंटिमेंट। तो सेंटिमेंट का जो फ्यूल है जब वो थोड़ा कम होता है तो आपका गियर लोअर गियर में आ जाता है।
1: भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से हैं। दोनों ही देश आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को समझते हैं।
2: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि प्रौद्योगिकी साझेदारी भारत जापान सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होगा।
2: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
1: उदयन, अभी प्रधानमंत्री को हमने सुना, उन्होंने कहा कि जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर जो क्षमता है उसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति शक्ति देगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर हम भी ऑफकोर्स कम्पीट कर रहे हैं, तो हमारी जो एक परिकल्पना है विकसित भारत की उसको किस तरीके से ये साकार करने में मददगार रहेगा।
0: देखिए, कई बार कई चीजें हैं, अब आपको जीरो से स्टार्ट करने में टाइम लगता है, तो अगर आप वो पार्टनरशिप से करते हैं तो जहां पे आपके दूसरे एक पार्टनर कंट्री हैं जिस उनके जो स्ट्रेंथ्स हैं उन जो जहां पे वो सक्षम ज्यादा है हमसे, वो चीजें वो अपने टेबल पे लाते हैं और हम हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो कैपेबिलिटी वो हम मेज पे लाते हैं। तो ये वो वाली अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जहाँ पे हमारे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी जो डिजाइनिंग जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसको मिलके हम वो चीज़ें प्रोड्यूस करें। क्योंकि देखिए, एक पर्टिकुलर देश का नाम लेते हुए ये कहना जरूरी है, दोनों देश दूध के जले हैं
3: जी,
0: तो छाछ भी वो फूक फूक के पी रहे हैं
1: जी,
0: ठीक है। तो वो क्रिटिकल मिनरल से जुड़ा हुआ जो एक्सपीरियंस है, दूसरी चीजें जो है उसको दिमाग में रखते हुए ऑब्वियसली ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, और ये जरूरी भी चाहिए आपको, क्योंकि यू कैन नॉट जस्ट स्टॉप, कार प्रोडक्शन बंद हो गया या कुछ और हो गया, डिस्ट्रप्शन हो गया जस्ट बिकॉज कोई स्टेटमेंट चली गई, तो वो उसके ये वो तो छोटी सी बात है, ये जरूरत भी है और ये लेवरेज किया जाए। जैसे कि मैंने कहा, ये अंडर सर्व था, ये अब वहां पे पहुंच उस पायदान में जा रहा है, उस स्तर में जा रहा है जहां पे इसको होना चाहिए था।
3: राइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर रिलेटेड स्टोरी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड दैट इंडिया जापान रिलेशंस आर ट्रूली वेरी स्पेशल एंड देयर आर मेनी शाइनिंग एग्जांपल्स ऑफ द सक्सेस ऑफ द इकोनॉमिक पार्टनरशिप। एड्रेसिंग इंडिया जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम इन न्यू दिल्ली दिस इवनिंग, मिस्टर मोदी सेड व्हेन जापान्स एक्सपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट कंबाइंड विद इंडियाज स्पीड एंड स्केल, the entire world benefits.
2: कुछ ही महीने पहले हमने टैक्सेशन, गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए। हम हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव दे रहे हैं जिसका लाभ आप सभी उठा सकते, और यही कारण है कि लगातार पिछले 4 वर्षों से जापान

0: गोल्डन रूल है, 5 से 10%, 100 रुपए अगर आपके निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, 5 से 10 रुपए से एक्सीड नहीं होना चाहिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद उद्यन कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए,
0: धन्यवाद।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise. Sensex adds nearly 580 points. Nifty settles at 24,176. Indian-Japan exchange agreements in fields including economic and energy security, pharmaceuticals and AI, and global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी के चैनल एफएम गोल्ड को सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आर्थिक दुनिया

0: सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। इसमें जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान और समुदाय की भागीदारी से लेकर हाई परफॉर्मेंस प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, बेहतरीन कोचिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण शामिल है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। फीफा विश्व कप में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच अमरीका के इंगलवुड में लॉस एंजल्स स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, "When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits." He said, "Both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound." The Prime Minister said, India and Japan reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless.
0: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
2: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, "Among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both the Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. India and Japan agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi yesterday. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both the sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Union Minister for Jal Shakti C.R. Patil yesterday reiterated that the rejuvenation of River Ganga is a shared national responsibility requiring sustained collaboration among central ministries, state governments, urban local bodies, scientific institutions and local communities. The minister said this while chairing the 19th meeting of the Empowered Task Force on River Ganga. He emphasized that strengthening sewage infrastructure, promoting reuse of treated wastewater and conserving wetlands and biodiversity will collectively accelerate the vision of an Aviral and Nirmal Ganga. He added that these acts will also ensure long-term water security and ecological resilience across the Ganga basin. Vice President C.P. Radhakrishnan interacted with 40 participants of MP Lead Fellows at Uprashtrapati Bhavan yesterday. In his address highlighting the importance of constitutional values, Mr. Radhakrishnan said, democracy flourishes when citizens uphold their duties along with their rights. The Vice President urged the fellows to learn with curiosity, innovate fearlessly, and remain committed to the larger national interest, expressing confidence that the MP Lead Fellowship would nurture future nation builders committed to a developed and self-reliant India. In Jammu and Kashmir, the first batch of pilgrims for the Sri Amarnath Ji Yatra yesterday reached the twin base camps at Nunwan in the Pahalgam area of Anantnag district and Baltal in Ganderbal district under tight security. The 57-day pilgrimage to the Holy Cave Shrine was formally flagged off from Jammu in the early hours by Lieutenant Governor Manoj Sinha. In the FIFA World Cup, Spain will take on Austria in a round of 32 match at the Los Angeles Stadium in Inglewood, US at 12:30 a.m. Indian Standard Time. In other round of 32 matches, Portugal will clash with Croatia in Toronto, Canada today at 4:30 a.m. IST. And that is the end of this news bulletin.

कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। मैं कोई इल्जाम नहीं ना कोई गिला बनी, मैं कोई इल्जाम नहीं ना कोई गिला बनी, बस एक आदत की तरह याद करोगे मुझे। मेरे अल्फाज तुम्हारे साथ ना चल पाए तो क्या, मेरे अल्फाज तुम्हारे साथ ना चल पाए तो क्या, भीड़ में भी अलग सी पाओगे मुझे। ढलती सांझ में जब सवाल उठेंगे कहीं, ढलती सांझ में जब सवाल उठेंगे कहीं, एक अधूरी सी कहानी सुनाओगे मुझे, एक अधूरी सी कहानी सुनाओगे मुझे। मैं ना रहूंगी तो भी असर बाकी रहेगा, मैं ना रहूंगी तो भी असर बाकी रहेगा, कभी कभी बेवफा यूं भी सोचोगे मुझे, कभी कभी यूं भी बेवफा सोचोगे मुझे। कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। और अगला गीत आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है कल आज और कल।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आज आपके साथ हूं मैं जयती। निशिगंधा में अगला गीत फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले, आवाज है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की।

शब की पेशानी पे ठहरा दर्द की स्याही में डूबा चांद, दिन की धूप ने जो ना छोड़ा रात ने उसको सौंपा चांद। शब की पेशानी पे ठहरा दर्द की स्याही में डूबा चांद, दिन की धूप ने जो ना छोड़ा रात ने उसको सौंपा चांद। भीड़ के जंगल से निकला रेत में तन्हा भटका चांद, याद की परछाई लिपटी देर तलक सहमा था चांद। नींद के सौदे हार गया जब, नींद के सौदे हार गया जब आंखों की देहरी आया चांद। मैंने पूछा कुछ भी नहीं था, मैंने पूछा कुछ भी नहीं था, गुपचुप दिल को पढ़ता चांद। एक ही चेहरे की खातिर, एक ही चेहरे की खातिर हर मौसम में भटका चांद, हर मौसम में भटका चांद। रात के आखिरी सन्नाटे में खुद से मिलता जुलता चांद, रात के आखिरी सन्नाटे में खुद से मिलता जुलता चांद। शब की पेशानी पे ठहरा दर्द की स्याही में डूबा चांद, दिन की धूप ने जो ना छोड़ा रात ने उसको सौंपा चांद, रात ने उसको सौंपा चांद। अगला गीत, फिल्म का नाम है सनम बेवफा, आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अगला गीत फिल्म का नाम है पारसमणि, आवाज है लता मंगेशकर और कमल बड़ौत की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आवाज है लता मंगेशकर और उदित नारायण की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्ज्वल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आर्थिक दुनिया, सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।

भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेघालय शिक्षक प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अकादमी लंबे समय से चली आ रही कमियों, खासकर शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ी कमियों को दूर करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह श्रृंखला अगले महीने की 15 से 27 तारीख तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट अगले महीने की 15 तारीख से गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट अगले महीने की 23 तारीख से कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने की इस महफिल में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है बहारों के सपने, आवाज है लता मंगेशकर की।

तुम आना एक रोज, तुम आना एक रोज मुझसे मिलने, तुम आना एक रोज मुझसे मिलने, मैंने बहुत संभाल कर रखा है तुम्हारे हिस्से का वक्त, मैंने बहुत संभाल कर रखा है तुम्हारे हिस्से का वक्त, तुम आना एक रोज मुझसे मिलने। और अगला गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है आस का पंछी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और गीत सुहाने में अब जो अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जंगली, आवाज मुकेश और आशा भोसले की।

तेरी हर बात को दिल पर उतारा हमने, तेरी हर बात को दिल पर उतारा हमने, जिंदगी हार दी खुद को संवारा हमने। रोज चेहरे पे नए रंग उतर आते हैं, रोज चेहरे पे नए रंग उतर आते हैं, तेरा किस्सा है ये हर बार छुपाया हमने। एक शोला सा उठा था कभी बस्ती के तले, एक शोला सा उठा था कभी बस्ती के तले, वक्त रहते ही उसे खुद से जलाया हमने। बात अधूरी ही सही मगर कहते रहे, बात अधूरी ही सही मगर कहते रहे, वक्त की चाल को चुपचाप निभाया हमने। तेरी हर बात को दिल पे उतारा हमने, जिंदगी हार दी खुद को संवारा हमने, जिंदगी हार दी खुद को संवारा हमने। और अब जो फिल्म, जिस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसका नाम है बॉम्बे टू गोवा, आवाज है किशोर कुमार की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। गीत सुहाने में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

वो जो कहते हैं कि पहले अक्ल से काम लेते, वो जो कहते हैं कि पहले अक्ल से काम लेते, उन्हें कौन समझाए मोहब्बत में हिसाब नहीं होते। वो जो कहते हैं कि पहले अक्ल से काम लेते, उन्हें कौन समझाए मोहब्बत में हिसाब नहीं होते। सोच समझकर तो बस रिश्ते निभाए जाते हैं, सोच समझकर तो बस रिश्ते निभाए जाते हैं। दिल जहां उतर आए वहां सवाल नहीं होते। हमने चाहा तो किसी शर्त का सौदा न किया, हमने चाहा तो किसी शर्त का सौदा न किया। इश्क में मुनाफे के अंदाज नहीं होते, इश्क में मुनाफे के अंदाज नहीं होते। वो जो कहते हैं कि पहले अक्ल से काम लेते, उन्हें कौन समझाए मोहब्बतों में हिसाब नहीं होते। इश्क को इश्क ही रहने दो दलीले न गढ़ो, इश्क को इश्क ही रहने दो दलीले न गढ़ो। आग के सामने अक्सर बयान नहीं होते, आग के सामने अक्सर बयान नहीं होते।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है यशुदास की और फिल्म का नाम है सुनैना। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 3:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है संगम, आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेवार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके।

0: है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेघालय टीचर ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये एकेडमी लंबे समय से चली आ रही कमियों, खासकर शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ी कमियों को दूर करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी उकदहान प्रांत में तीर्थयात्रा पर जा रहे 9 भिक्षुओं की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सूत्रों के अनुसार 11 साल के एक लड़के ने पिकअप ट्रक से इन भिक्षुओं को टक्कर मार दी। अधिकारियों ने बताया कि उकदहान प्रांत के कुल 35 भिक्षु तीर्थयात्रा पर थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह श्रृंखला अगले महीने की 15 से 27 तारीख तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट अगले महीने की 15 तारीख से गाली अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaishi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaishi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's 4th vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. India and Japan agreed to deepen cooperation in strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit level talks between PM Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaishi in New Delhi yesterday. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both sides expressed their shared intention to work as responsible powers in major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri yesterday said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Union Minister for Jal Shakti C.R. Patil yesterday reiterated that the rejuvenation of River Ganga is a shared national responsibility requiring sustainability.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है सौदागर, आवाज है कविता कृष्णमूर्ति, मनहर और सुखविंदर की।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। दिल ने धड़क कर जो कहा याद आया, किसी अपने का गिला याद आया। आज बोझिल थी जरा सांसों की चाल, तू परेशानी में था याद आया। दिन किसी तरह से काटा मैंने, फिर तेरा रात का वादा याद आया। लोग मिलते रहे चेहरे बदले, लोग मिलते रहे चेहरे बदले, फिर कोई भूला सा शहर याद आया। बात कहने की हिम्मत थी लेकिन जब वो चला ही गया याद आया। फूल के नीचे बैठी रही देर तलक, फूल के नीचे बैठी रही देर तलक, दिल बहुत रोया तब याद आया, दिल बहुत रोया तब याद आया। और अगला गीत फिल्म का नाम है कोयला।

हवाओं ने सिखाया कि झुकना जरूरी है, हर शाख को मौसम में ढलना जरूरी है। जो वक्त की धूप से आंखें चुराता रहा, उसे अपने ही साए में जलना जरूरी है। रिवायतों की धूल जब सांस रोकने लगे, तो कुछ सवालों का उगना जरूरी है। जो कल की लकीरों को तकता ही बैठा हो, उसे आज की मिट्टी में चलना जरूरी है। हवाओं ने सिखाया कि झुकना जरूरी है, हर शाख को मौसम में ढलना जरूरी है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है ड्रीम गर्ल।

आंखों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है गुप्त, आवाज है अलका याग्निक और उदित नारायण की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है सनम बेवफा, आवाज है लता मंगेशकर की।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलने के वादे के साथ आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, आवाज है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों तथा प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने

0: बताया कि 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी मुग्दाहान प्रांत में तीर्थ यात्रा पर जा रहे 9 भिक्षुओं की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। सूत्रों के अनुसार 11 साल के एक लड़के ने पिकअप ट्रक से इन भिक्षुओं को टक्कर मार दी। अधिकारियों ने बताया कि मुग्दाहान प्रांत के कुल 35 भिक्षु तीर्थ यात्रा पर थे। फीफा विश्व कप में स्पेन ने राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। इंगलवुड में लॉस एंजल्स स्टेडियम में खेले गए मैच में मिकेल ओयारज़ाबाल ने 36वें मिनट में गोल करके स्पेन को बढ़त दिलाई, जिसके बाद पेड्रो पारो ने 66वें मिनट में एक और गोल कर दिया। ओयारज़ाबाल के 89वें मिनट में अपना दूसरा गोल करके जीत पक्की कर दी। अब अंतिम 16 में स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल या क्रोशिया से होगा। कनाडा ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ी तानिया हेमनाथ अमेरिका की दिशा गुप्ता को 21-16, 21-18 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला जापान की रिको गुंजी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The PM said India and Japan reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both PMs jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. India and Japan agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi yesterday. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri yesterday said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Union Minister for Jal Shakti C.R. Patil yesterday reiterated that the rejuvenation of River Ganga is a shared national responsibility requiring sustained collaboration among central ministries, state governments, urban local bodies, scientific institutions and local communities. The minister said this while chairing the 19th meeting of the Empowered Task Force on River Ganga. He emphasized that strengthening sewage infrastructure, promoting reuse of treated wastewater and conserving wetlands and biodiversity will collectively accelerate the vision of an Aviral and Nirmal Ganga. He added that these acts will also ensure long-term water security and ecological resilience across the Ganga basin. Vice President C.P. Radhakrishnan interacted with 40 participants of MP Lead Fellows at Uprashtrapati Bhavan yesterday. In his address,

3:10 हुए हैं। दोस्तों आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हमराही, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। कहते हैं जिंदगी में कुछ मौसम ऐसे भी आते हैं जब दिलों के बीच की दूरियां खुद ब खुद मिटने लगती हैं और मुलाकातों की खुशबू फिजाओं में घुल जाती है। इंतजार के बाद आने वाले ऐसे ही खूबसूरत पलों का एहसास कराता है फिल्म लवर्स का ये खूबसूरत सा गीत, आवाज लता मंगेशकर और अमित कुमार की है।

दोस्तों, प्यार जब दिल की धड़कनों में बस जाता है तो हर रास्ता, हर मौसम और हर एहसास उसी का नाम लेने लगता है। मन किसी और दुनिया में खोया खोया सा रहता है और हर पल बस अपने प्रिय की यादों के इर्द गिर्द ही घूमता है। ऐसी ही मासूम दीवानगी और मोहब्बत

कहते हैं प्यार कभी दस्तक देकर नहीं आता, तो वो तो चुपके से दिल में उतर जाता है, फिर मुस्कानें भी बेवजह खिलने लगती हैं और हर धड़कन किसी का नाम गुनगुनाने लगती है। ऐसे ही शरारत, मासूमियत और प्यार के रंगों से सजा है हमारा अगला गीत। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, आवाजें किश कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं।

3:33 और 8 सेकेंड हुए हैं दोस्तों। FM गोल्ड यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। कहते हैं जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो शब्द भी महकने लगते हैं। एक खत और उसमें रखा

कभी कभी प्यार भरी एक छोटी सी नसीहत भी रिश्तों की मिठास को और गहरा कर देती है। साल 2066 की फिल्म ममता का ये सदाबहार गीत, इन बहारों में अकेले ना फिरो, छेड़छाड़ अपनापन और हल्की सी फिक्र को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की मधुर आवाजें इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना देती हैं। तो आइए आप और हम सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

प्यार सिर्फ इजहार का नाम नहीं, इसमें रूठना भी है, मनाना भी है और नोकझोंक भी है और मुस्कुराहट कर हार मान लेने का अपना ही आनंद भी है। कभी एक छोटी सी तकरार रिश्ते में ऐसी मिठास खोल देती है कि वही पल उम्र भर की याद बन जाता है। अब जो सदाबहार गीत आपको सुनाने जा रही हूं, इसी चुलबुले अंदाज और प्यार भरी नोकझोंक का खूबसूरत सा उदाहरण है। इसमें रूठने की अदा है, मनाने की कोशिश है और दिलों के बीच छिपा वो अपनापन है जो हर शिकायत को मुस्कान में बदल देता है। कुछ इस तरह।

समझे अज समझे।

तेरे नैनों की मैं दीप जलाऊंगा। इस खूबसूरत से गीत को आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म का नाम है अनुराग।

दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं झूठा कहीं का फिल्म का यह गीत, आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्ज्वल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इसमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा आज ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खमेनी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। यह राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने

सुबह के 4:10 और 52 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और इस समय आप सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी की मंजिल, पसंद और सपने अलग अलग होते हैं। दूसरों की राह देखकर अपनी दिशा मत बदलिए। जो आपके दिल को सुकून दे वही आपकी असली पहचान बन सकता है। बस होना चाहिए कि रिश्तों में सम्मान हो और जीवन में अपने मन की सच्ची आवाज सुनने का साहस। जब आप अपने मूल्यों और सपनों के साथ आगे बढ़ते हैं तभी सफर भी खूबसूरत बनता है और मंजिल भी। आइए सुनते हैं सफर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में।

जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि कोई खास वजह नहीं होती, फिर भी मन नए नए सपने बुनने लगता है। यही छोटे छोटे ख्याल, यही अनदेखे एहसास आगे चलकर बड़े इरादों और नई मंजिलों की शुरुआत बन जाते हैं। फिल्म रजनीगंधा का एक खूबसूरत गीत है जो हमें याद दिलाता है कि हर सपना पहले एक ख्याल बनकर ही जन्म लेता है। इसलिए अपने मन की सकारात्मक सोच पर भरोसा रखिए, क्योंकि आज की एक छोटी सी उम्मीद कल आपकी सबसे बड़ी सफलता बन सकती है। तो आपको सुनवाते हैं रजनीगंधा फिल्म का गीत मुकेश के स्वर में।

दोस्तों, जिंदगी में गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपनी भूलों से सीख लेकर खुद को बेहतर बनाता है। पछतावा अगर बदलाव की शुरुआत बन जाए तो हर ठोकर एक नई मंजिल का रास्ता दिखा सकती है। फिल्म जनता हवलदार का एक ऐसा ही गीत है। इसी आत्म मंथन और एहसास को ये गीत खूबसूरती से व्यक्त करता है। तो आइए सुनते हैं इस दिल को छूने वाला नगमा जिसे स्वर दिया है अनवर ने। फिल्म का नाम है जनता हवलदार।

0: है कार्यक्रम अरुणिमा मेरी यानी अर्चना बिसारिया के साथ। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं समर्पण से बनते हैं। जब किसी की खुशी हमारी अपनी खुशी बन जाए तो जीवन के हर रंग और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। सच्चा अपनापन वही है जो बिना किसी अपेक्षा के मुस्कुराहट बांटता रहे। अब जो गीत हम आपको सुनवाएंगे उसमें प्रेम समर्पण और जीवन की खूबसूरत भावनाओं का अनमोल एहसास है। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आनंद का ये गीत, आवाज मुकेश की है।
1: नहीं, नहीं।

कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि कोई हमें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, लेकिन याद रखिए, हर सफर का एक पड़ाव ऐसा भी होता है जहां सबसे पहले हमें खुद से दोस्ती करनी होती है। जब मन मजबूत हो जाए तो दुनिया की हर राह आसान लगने लगती है। ऐसा ही एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, अभिमान फिल्म का, आवाज किशोर कुमार की। ये गीत हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत अपने भीतर के विश्वास में छिपी होती है। जब आप खुद का साथ नहीं छोड़ते तो मंजिल देर से ही सही लेकिन मिलती जरूर है।

दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत धुन तब बनती है जब रिश्तों में तालमेल, विश्वास और अपनापन हो। जैसे सुर और गीत एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसे ही साथ, सहयोग और संवेदनाएं जीवन को अर्थ देती हैं। आइए सुनते हैं ये गीत जिसमें इसी मधुर संगम का खूबसूरत एहसास है। प्रेम, समर्पण और संगीत की मिठास से सजाइए नगमा आज भी दिलों को छू लेता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस गीत की, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

जिंदगी हमें हर पल यही सिखाती है कि सच और आत्मविश्वास से बढ़कर कोई ताकत नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, अपने वजूद को छिपाकर नहीं बल्कि पूरे हौसले और ईमानदारी के साथ जीना ही असली जीत है। इसी जज्बे को आवाज देता है हमारा ये गीत, हमें प्रेरित करता है कि डर या संकोच नहीं बल्कि सच्चाई, साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन का हर पल जिए। जी हाँ।

चलते चलते हम एक बात आपको जरूर कहेंगे कि रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है और इसी बदलाव का नाम है जिंदगी। कभी लोग साथ चलते हैं, कभी राहें अलग हो जाती हैं, कभी अपने भी दूर लगते हैं तो कभी अजनबी दिल के करीब आ जाते हैं। लेकिन इन बदलते रिश्तों के बीच अगर कुछ अटल रहता है तो वो है आपका आत्मविश्वास और आपका सच्चा व्यक्तित्व। जिंदगी हमें यही सिखाती है कि लोगों के बदलने से अपने सपनों का रास्ता मत बदलो। हर अनुभव आपको थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और समझदार बनाता है। तो दोस्तों, ये है कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर हम आपको ले चल रहे हैं। फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते, आवाज किशोर कुमार की और सुमन कल्याणपुरी की है। आप आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का और मुझे यानी अर्चना बिसारिया को अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम यानी अरुणिमा कार्यक्रम को समाप्त करने का। आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम में। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान की संबंध अति विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच से श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के साथ एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों को की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श होगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा आज ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। सीरिया के दशमिक के एक कैफे में विस्फोट में 9 लोगों की मौत की खबर है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। लॉस एंजल्स स्टेडियम में खेले गए मैच में मिकेल ओयारजाबल ने 36वें मिनट में गोल करके स्पेन को बढ़त दिलाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच के मैच के विजेता से होगा। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त को गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जबकि दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा। इसके साथ ही

2:05:10 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और आइए अब बारी है कार्यक्रम भोर सुहानी की। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम में अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ, जिसे आवाज दी है कविता कृष्णमूर्ति ने। फिल्म का नाम है 1942 A Love Story।